मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 47 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप सभी को आयुष तोमर का नमस्कार।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से

0: सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है गुंदेचा बंधुओं की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये भजन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह व साथियों की आवाज़ में ये भजन।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस समय स्टूडियो में प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आज का विषय है भारतीय परिवार मूल। आलेख एवं वाचन स्वर डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार जी का है।
1: वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप सांसारिक सुख सुविधाओं ने आज के मनुष्य को आत्म केंद्रित अधिक बना दिया है। कहने को तो सब कहते हैं कि यह युग वैश्वीकरण का है। विश्व के समस्त देश संचार साधनों की सहज उपलब्धि से एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि देशों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि आर्थिक दृष्टि से बड़े देश छोटे देशों को समाप्त करने के लिए उद्यत रहते हैं। एक विश्व के निर्माण का यह कौन सा रूप है? विश्व निर्माण की बात करने से पहले राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से पहले समाज निर्माण तथा समाज निर्माण से पहले परिवार निर्माण करना अनिवार्य होगा। भारतीय संस्कृति का यह मूल तत्व माना गया है कि संस्कारवान तथा मानवीय मूल्यों से युक्त परिवार ही क्रमशः समाज, राष्ट्र और अंततः इस विश्व को रहने योग्य बनाए जाने की मुख्य धुरी है। एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझने की भावना ही परिवार व्यवस्था का मूल मुख्य सूत्र होता है। भारत के शास्त्रों में आदर्श परिवार व्यवस्था के लिए अथर्ववेद के सामनस्य सूक्त में उन मौलिक बिंदुओं की चर्चा की गई है जो भारतीय परिवार मूल्य के मूल आधार माने जा सकते हैं। यह ऋचा इस प्रकार है: सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्या। अर्थात परमपिता पर

0: परमेश्वर की ओर से आदेश है कि हे गृहस्थ जनों, मैं तुम सबको सहृदय युक्त, सामनस्य वाला तथा परस्पर विद्वेष और विरोध रहित करता हूँ। तुम सब एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव रखने वाले बनो और एक दूसरे को ऐसे चाहो जैसे गौ सद्य उत्पन्न अपने बछड़े को चाहती है। परिवार मूल्य की यह आदर्श स्थिति है जहाँ संतान माता पिता की आज्ञाकारी हो, इनके मन परस्पर मिलते हों, पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति मधुर और शांतियुक्त वाणी बोलने वाले हों, भाई भाई से, बहन बहन से और सब परस्पर द्वेष भाव से रहित हों, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हों। परिवार को सुखी तथा जीवन को आनंदमय बनाने वाला आदर्श परिवार का यह वैदिक प्रकरण बहुत विस्तार से वर्णित है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधुनिक बुद्धिजीवी इस परिवार व्यवस्था को आधुनिक जीवन पद्धति में अस्वीकार्य कह सकते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि इस परिवार व्यवस्था के मूल में जिन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की गई है, वे बिंदु ही परिवार क्या समाज, राष्ट्र और विश्व को कल्याणमय बनाने के मुख्य बिंदु हैं। सहृदयता अर्थात हृदयगत भावना की समानता है। यह तभी होती है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करता है। रामकथा के उस प्रसंग को याद करें जहां लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से मूर्छित देखकर श्री राम बहुत दुखी होते हैं। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर लोगों ने लक्ष्मण से लक्ष्मण का दुख पूछा तो लक्ष्मण का उत्तर था कि आप राम से पूछिए कि मेरा दुख और पीड़ा कैसी थी। हमने राम कथा का पारायण तो बहुत किया, किंतु राम और लक्ष्मण के बीच की पारिवारिक सहृदयता को कितना सीखा। इस सहृदयता का स्वाभाविक परिणाम सामनस्य होगा, अर्थात परिवार के सदस्यों के मन एक दूसरे के प्रति शुभ भावों वाले तथा समान प्रकार के चिंतन से युक्त होंगे। एक दूसरे के प्रति खान पान की उदारता तथा दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान का भाव ही परिवार में सुख और शांति का आधार होता है। इन गुणों का स्वाभाविक परिणाम विद्वेष तथा वैर भाव का अभाव ही होगा। एक दूसरे के प्रति प्रीतियुक्त व्यवहार पारिवारिक सुख शांति का मुख्य आधार बनता है। इन गुणों की स्वीकार्यता में किसी भी आधुनिक बुद्धिजीवी का विरोध संभव नहीं है। आज के भौतिक युग में संयुक्त परिवारों की बातें नई पीढ़ी के लिए यद्यपि परिकथाओं जैसी हो सकती हैं, किंतु नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए धन कमाने वाली शिक्षा के साथ परिवार के बुजुर्गों द्वारा दी गई नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा की उपयोगिता का महत्व कम नहीं हो सकता। वर्तमान एकल परिवारों में भारतीय परिवार मूल्यों की अनिवार्यता को पुनः अनुभव किया जाने लगा है, जिनके अभाव में पिछले लगभग 50 वर्षों से हम अपनी संस्कृति के इस मुख्य बिंदु से दूर होते जा रहे हैं। ये पारिवारिक मूल्य हमारे समाज और राष्ट्र के वास्तविक संरक्षक हैं।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत विषय था भारतीय परिवार मूल, आलेख एवं वाचन स्वर डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार जी का था। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय है ग्रीष्मकालीन मूंग और ग्वार की फसल में सामयिक कार। और उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों नमस्कार। इसमें आपने ग्रीष्मकालीन मूंग लगा रखी होगी और निश्चित तौर पर अच्छी ही फसल होना चाहिए, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ से शिकायत आई है कि हमारी खेत की मूंग में इल्ली आना शुरू हो गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने खलिहान में रखी फसलों को जल्दी गहाई कर लें, और गहाई करके 1-2 दिन सुखा करके उनको भंडारण कर लें। उसके बाद अब रही बात आपकी मूंग की और ग्वार की, तो लगभग तापक्रम 42 के आसपास हो गया है, तो अब आपको हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक निंदाई का सवाल है, तो निंदाई आप जो लाइनें हैं दो लाइनों के बीच में हो के द्वारा आप हो चलाकर निंदाई कर सकते हैं, या श्रमिक लगा करके आप निंदाई करा सकते हैं खुरपी के द्वारा। इस अवस्था में अब खरपतवार नाशी दवा डालना संभव नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यदि खरपतवार नाशी दवा डालेंगे तो हमारा जो फूल आने की अवस्था है और फलियां बनने की वो प्रभावित होंगी, इसलिए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक कीट नियंत्रण का सवाल है, जो छोटी इल्ली जो दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो पत्तियों का रस चूसती है, और यहाँ तक कि रस इल्ली के अलावा माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जेसेड है, ये भी थोड़ी मात्रा में कीट दिखाई देते हैं। खरीफ की तुलना में ग्रीष्मकाल में बहुत कम, ना के बराबर कीड़े लगते हैं, लेकिन इल्ली की जानकारी प्राप्त हुई है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा, अगर ये उपलब्ध ना हो पाए तो डाई मिथोएट 30 EC 800 ml दवा को 600 से 700 L पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये जो इल्लियाँ हैं उनका कंट्रोल हो जाएगा। एक फली बीटर और फली छेदक, जो हमारी मूंग की फलियां बनती हैं उनमें इल्ली छेद करके फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो इस प्रकार की इल्लियों की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास नाम की दवा आती है, ट्राइजोफास 40 EC दवा, इसको क्या करना है, 900 ml दवा 600 से 700 L पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग पर, खड़ी फसल पर छिड़काव कर दें, और इस तरह से आपका जो किसी भी प्रकार की इल्लियां हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। हालांकि ग्रीष्मकाल में मूंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, लेकिन यदि आपको लगे कि पीला मोजेक कहीं दिखाई दे रहा हो, तो इसके लिए मिथाइल डेमेटान 25 EC दवा आती है, इसको 1 L दवा 600 से 700 L पानी में घोल करके 15 दिन के अंतर से 1-2 बार छिड़काव करने से ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलती है, और अगर सफ़ेद मक्खी नष्ट हो जाएगी तो पीला मोजेक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और अगर आपको रोगी पौधे मिले ज़्यादा, तो उखाड़ करके आप जमीन में दबा सकते हैं, इस तरह से भी हम अपना पीला मोजेक से नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्वार का सवाल है, कुछ किसान भाइयों ने ग्रीष्मकाल में भी कुछ किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगाई है, तो किसान भाइयों तापक्रम की बात मैंने बता दी कि लगभग 42 के आसपास हो गया, इसलिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। ग्वार गहरी जड़ों वाली फसल है, इसलिए इसे हर हफ्ते पानी देना आवश्यक है, और इसको पानी की ग्रीष्मकाल में ज़्यादा आवश्यकता होती है, और फूल आने पर तो पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसको सिंचाई का ध्यान रखें। खरपतवारों की जहाँ तक सवाल है, पौधे बड़े बड़े होने की अवस्था में हैं, अगर आप खेत में आसानी से चल सकते हैं तो हो के द्वारा ही आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, हालांकि छाया अगर ज़्यादा हो गई हो तो खरपतवार ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जहां तक कीट नियंत्रण का सवाल है, इसमें माहू और सफ़ेद मक्खी और पत्ती छेदक कीट जो होते हैं ये बहुत प्रभावित करते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए 0.5% मेलाथियन 50 EC दवा या 0.07% इंडोसल्फान 35 EC का छिड़काव करें। अगर किसी प्रकार की जैसे बीमारी रहती है, पर्णांग वाली बीमारी से बचने के लिए, पहले तो बीजों को हमको, यानी आप चाहें तो 100 ppm स्ट्रेप्टोमाइसिन से उपचारित करके बोना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि पत्तियों पर आ गया है तो ट्रेप्टोमाइक्लिन 150 ppm यानी 0.2% ब्लीटॉक्स के मिश्रण का छिड़काव करें, तो इस तरह की जो चूर्णी आस्था वगैरह भी है वो भी खत्म हो जाएगी, और सिंचाई का ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनी आपने सामयिक चर्चा, जिसका विषय था ग्रीष्मकालीन मूंग और ग्वार की फसल में सामयिक कार, और उक्त विषय पर आपको जानकारी दी SS चौधरी ने। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आपके लिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
4: चौराहे पर हमेशा जेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: ए भाई जरा

0: याद रखो हमारी बात।
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना।
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
2: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
5: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
4: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन।
6: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, अब से कुछ ही देर में संस्कृत और हिंदी में।
7: अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेंद्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइम्नाल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 पर आपके लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार होंगे नारायण सिंह कुशवाहा व साथी। प्रातः 9:00 आपके लिए प्रस्तुत रहेगा सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी मिताली कातरनीकर और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा गायन में राग जौनपुरी। प्रातः 10:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का आप आनंद आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से ले सकेंगे।

प्रातः 11 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रातः 12 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। प्रातः दोपहर 1 बजे आप सुन सकेंगे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति इंदौर जिले की होगी, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत। दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से 4:58 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: साया 5:02 पर आपके लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा, प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। साया 5:33 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। साया 6:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। साया 6:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। साया 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे बचत एक लाभ अनेक और किसान क्रेडिट कार्ड। रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। रात 10:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम राग रजनी। इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत हमने लिया है फिल्म लगान से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत AR रहमान का है और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली ने। आइए सुनते हैं इन फिल्म लगान से कार्यक्रम के इस पहले गीत को।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म गदर से। इस गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने, संगीत उत्तम सिंह का है और आवाज़ उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की है। आइए सुनते हैं

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली

0: ஸ்மார்ட்.
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है और आवाज़ सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की है। आइए सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म परिणीता से। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का है और आवाज़ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है। आइए सुनते हैं फिल्म परिणीता से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म इस्लम डॉग मिलेनियर का ये गीत, जिसको लिखा था गुलजार ने, संगीत एआर रहमान का और आवाज़ एआर रहमान, सुखविंदर, तन्वी, महालक्ष्मी अय्यर और विजय की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म टशन से। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत विशाल शेखर का है और आवाज़ उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर शॉर्ट वेव पर एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं फिल्म दंगल के इस गीत के साथ जिसको लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज़ जोनिता गांधी की है। आइए सुनते हैं फिल्म दंगल से कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट

0: अब टिब्बेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के

0: रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहाँ वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देश बंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
6: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
5: President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
7: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
5: Union Home Minister Amit Shah will visit India's border regions over the next few days and hold security-related meetings. Mr. Shah reached Bikaner in Rajasthan last night. The Home Minister will visit the BSF's Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway have been rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. The Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. More in this report.
8: DGCA has made it compulsory for airlines to broadcast specific health announcements during flights to help identify possible Ebola cases early and prevent the spread of the disease. Passengers have been asked to immediately report symptoms such as fever, weakness, muscle pain, headache, sore throat, vomiting, diarrhea or bleeding to the airline crew members as well as immigration or medical authorities upon arrival. The DGCA further stated that if symptoms develop within 21 days of arrival in India, travelers should seek medical assistance from designated hospitals and inform the airport health office. For suspected cases on board an aircraft, the SOP directs that the passenger should be relocated to the rear of the aircraft and, if possible, three rows in front and adjacent seats should be kept vacant. Airlines have also been instructed to maintain adequate stock of triple-layer masks, disposable gloves, PPE kits, hand sanitizers and biohazard disposal bags. With Anand Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram in Delhi. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. In Punjab, polling has begun for municipal elections. Voting is taking place for 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 20 Nagar Panchayats. More from our correspondent.
9: These civic polls are being closely watched as a key political indicator ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. There is a multi-cornered contest as all major political parties, including the ruling Aam Aadmi Party, Indian National Congress, Shiromani Akali Dal and Bharatiya Janata Party, have fielded their candidates. According to the State Election Commission, 7,555 candidates are in the fray from a total of 1,896 wards across the state, where the voting is presently going on under a heavy police bandobast with a deployment of 32,000 police personnel. The modal code of conduct is already in force across all civic bodies, as IAS and senior PCS officers have also been deputed as general observers to ensure a free and fair elections. To encourage voter participation, the Punjab government has declared a public holiday today for all, along with paid leave provision for eligible workers in industrial and commercial establishments. Counting of votes will take place on Friday, May 29th. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. Similar weather conditions will persist during the day in parts of Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Uttarakhand and West Madhya Pradesh. Gangetic West Bengal, Konkan and Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience hot and humid weather today. According to the weather agency, parts of northeast India, Bihar, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Mahe are likely to witness heavy rainfall today. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost every district has crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda recorded one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. Meanwhile, southwest monsoon is expected to reach Keralam today. The arrival of the monsoon is very critical to the Indian agricultural economy and daily life. More from our correspondent.
10: The southwest monsoon, which usually reaches Keralam on June 1st, may advance and is expected to arrive in Keralam today. The meteorological department has declared an yellow alert, indicating isolated heavy rain in 4 of the 14 districts in Keralam today. The onset of the monsoon will be officially declared if 2.5 mm of rainfall is recorded for 2 consecutive days in 60% of the 14 designated weather stations in Keralam and Lakshadweep. Wind and inset that will also be considered for the same. In the meantime, about 5 mm of rain was recorded in the southern districts of Keralam by 7 a.m. today. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
5: The U.S. military carried out self-defense strikes targeting Iranian missile launch sites and boats near the Strait of Hormuz amid an ongoing ceasefire between the two countries. CENTCOM spokesperson Timothy Hawkins said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats attempting to deploy mines, adding that U.S. forces were acting with restraint while defending the troops during the ceasefire. Iranian President Masoud Pezeshkian has ordered the restoration of internet access across the country. Iranian authorities had imposed a near-total internet blackout across the country for more than 87 days. The restrictions reportedly hampered civilians' access to information during the U.S.-Iran conflict, while also severely affecting businesses dependent on internet connectivity. On to sports. In football, India thrashed the Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. Avika Singh starred for the hosts with 4 goals, while Priyanka Nauram and Karishma scored a brace each. India will now face Bangladesh in their next match on Sunday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will advance directly to the IPL 2026 final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. India's top shuttlers Lakshya Sen and PV Sindhu will spearhead the country's challenge at the Singapore Open Super 750 tournament, kicking off today. Other Indian players including Ayush Shetty, Kidambi Srikanth and H.S. Pranoy are also set to feature in the tournament. In women's singles, PV Sindhu will begin her campaign against Indonesia's Putri Kusuma Vardhani, while Unnati Huda will face Japanese shuttler Tomoka Miyazaki, and Malvika Bansol will be up against Chinese Taipei's Lin Xiang Ti. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
11: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing

0: Green card seekers left U.S. in state of anxiety, writes the Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Medium wave 188.3.
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं नारायण सिंह कुशवाहा व साथी। साथियों के नाम हैं भगवान दास कुशवाहा, बलदेव बादाम कुशवाहा, पर्वत कुशवाहा और रमेश चंद्र वंशकार। और इनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत ये रावला।

कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं नारायण सिंह कुशवाहा और साथियों को। कार्यक्रम के क्रम में अब आपके लिए प्रस्तुत है ये बुंदेली महिमा गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक लहरी। अभी आपने सुना ये ढिमरियाई गीत, कलाकार हैं नारायण सिंह कुशवाहा व साथी। कार्यक्रम में लीजिए अब इन्हीं की आवाज़ में प्रस्तुत है ये चौपड़ी।

इस ढिमरियाई के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। कलाकार थे नारायण सिंह कुशवाहा व साथी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सिफ की सांचू सीमा चौकी का कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन का आह्वान किया है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों कैलाश चंद्र पंत और डॉ. नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश की इन महान विभूतियों ने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर एक स्थान पर है। कल तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। और मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हुआ। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
2: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति को स्मरण कर रहे हैं जो एक महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनका नाम है काजी नजरुल इस्लाम, जिनकी जयंती हर वर्ष बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। उन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त आवाज थे। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल के चुरुलिया गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनकी प्रतिभा और संघर्षशीलता ने उन्हें साहित्य जगत में एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने कविता, गीत, कहानी, उपन्यास और नाटक जैसी अनेक विधाओं में अपनी लेखनी का जादू बिखेरा। नजरुल इस्लाम जी की रचनाओं में देशभक्ति, क्रांति, प्रेम, समानता और मानवता की गहरी भावना दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही ने युवाओं के मन में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की नई चेतना जगाई। उन्होंने अपने शब्दों से समाज में व्याप्त अन्याय और कुरीतियों को चुनौती दी। काजी नजरुल इस्लाम केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द के भी महान प्रतीक थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृत के बीच एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर इस्लामी परंपराओं की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और देवी देवताओं का भी सुंदर वर्णन दिखाई देता है। यही कारण है कि उन्हें मानवता का कवि कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने लगभग 4000 से अधिक गीतों की रचना की है, जिन्हें नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है। उनके गीत आज भी भारत और बांग्लादेश में समान रूप से लोकप्रिय हैं। उनकी धुनों में देशभक्ति, आध्यात्मिकता और संवेदनाओं की गहराई स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। बांग्लादेश ने उन्हें अपना राष्ट्रीय कवि घोषित कर सम्मानित किया। यह उनके साहित्य और विचारों की महानता का प्रमाण है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहित्य वही है जो समाज को जागरूक करे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए और मानवता को जोड़ने का कार्य करे। आज जब दुनिया कई प्रकार के सामाजिक और वैचारिक संघर्षों से गुजर रही है, तब काजी नजरुल इस्लाम के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका संदेश हमें प्रेम, समानता, साहस और भाईचारे की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए उनकी जयंती पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम समाज में सद्भाव, समानता, मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जिनका योगदान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके प्रति हमारी कुछ ना कुछ भूमिका ज़रूर होनी चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की मजबूती का आधार होता है। यदि अधिकार हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो कर्तव्य हमें अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना सिखाते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक चेतना का विकास करना है। इनमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल है। हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे तो समाज और राष्ट्र दोनों अधिक सशक्त बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, तो देश की प्रगति स्वतः सुनिश्चित हो सकती है। मौलिक कर्तव्य केवल कानून की बातें नहीं, बल्कि ये हमारे नैतिक दायित्व भी हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि राष्ट्र केवल सरकार से नहीं चलता, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है। एक आदर्श नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा के साथ पालन करे। आज के युवाओं के लिए मौलिक कर्तव्यों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। यदि युवा संविधान के आदर्शों को अपनाए तो सामाजिक सद्भाव जरूर बना रहेगा और राष्ट्रहित हमेशा सुनिश्चित किया जा सकेगा। और इसी के साथ भारत कई सारी ऊंचाइयों को प्राप्त बड़ी आसानी के साथ कर लेगा। हमें यह भी समझना होगा कि मौलिक कर्तव्य केवल पुस्तकों तक सीमित ना रहे, इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। सड़क पर नियमों का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को अपनाना, ये सभी हमारे कर्तव्यों का हिस्सा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से ही अधिकारों की गंगा बहती है। अर्थात यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हम अपने अधिकारों का सही अर्थों में आनंद ले सकेंगे। आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सभी संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे और मौलिक कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करेंगे। यही एक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की पहचान होगी।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात
2: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
3: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

सूचना और समाचारों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर के तहत हमने आपसे कई सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं की। उम्मीद करते हैं चर्चा आपके जीवन में ज़रूर महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी और आप सभी अपने जीवन में विशेष सफलता सुनिश्चित करेंगे और अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का समापन कर रहे हैं इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:31 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज कलाकार हैं मिताली कातरणीकर, और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है गायन में राग जौनपुरी। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे की तपिश होने से आमजन हलाकान हैं। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनो जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन, वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील सचान का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश प्राप्त हुई है लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और PR जैन की, साथ ही साथ नांदेड़ से प्रकाश जैन की। इसी के साथ दिल्ली बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष रज़ा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। इसी के साथ ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म तेजाब से इस गीत की, जिसको लिखा है जावेद अख्तर ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज़ अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और नितिन मुकेश की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर से। सुरेंद्र संधू, आरहा संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और प्रतिशा संधू के साथ साथ मैक्स की। इसी के साथ शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म दोस्ती से इस गीत की, जिसको लिखा है समीर ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। और इस गीत की हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय की। साथ ही साथ इसी गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव की। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल शोमा, फुंदीबाई बागरी की। लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कहना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की। और इन सभी की फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया था ये गीत। अब समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार। इसी के साथ झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया की, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म कटी पतंग से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है, आवाज़ किशोर कुमार की और राहुल देव बर्मन की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

संगीत पर आधारित कार्यक्रम का व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करने का समय आ गया है। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आज़ाद नगर

दीपक यादव की, और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म जीने की राह से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर फिल्म जीने की राह से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल हम कर रहे हैं। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इसी के साथ साथ सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और बेबी बॉय हिमाक्ष। इसी के साथ रोहित दास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता शिंदे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे और कृष्णा घोड़के की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म रोटी से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात,
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जिला नांदेड़ एताला मध्य महाराष्ट्र से। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल की। साथ ही साथ पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म चमत्कार से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत अनु मलिक का है और आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। अब समय हो गया है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुक्ष मूणत की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है ग्राम लोहे जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश, गौहर और सुनील पाठक की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म नसीब से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ है डॉक्टर कमलेश अवस्थी और सुमन कल्याणपुरी की। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का ये अंतिम गीत।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन का आह्वान किया है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गंगा दशहरा के अवसर पर उज्जैन में आयोजित क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राज्य महिला आयोग ने लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर सुनवाई का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन कल भोपाल जिले के लगभग 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव कल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश इन दिनों भीषण लू और गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आज का समय एक तेज रफ्तार समय है, दौड़ती भागती हुई जिंदगी है। ये अनगिनत उलझनों का समय है। चेहरों पर मुस्काने हैं, लेकिन मन के भीतर कहीं एक बेचैनी भी है। हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, और इसी दौड़ में शायद मन का सुकून कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। कभी काम की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बिना किसी वजह के मन का खाली खाली सा हो जाना। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी अनकही थकान को अपने भीतर लिए चल रहा है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से सुकून की तलाश करता है। किसी को पूजा और प्रार्थना में शांति मिलती है, कोई संगीत से अपने मन को हल्का कर लेता है, कोई प्रकृति के बीच पहुंचकर शांति महसूस करता है, कभी किसी का साथ सुकून लेकर आता है, तो कभी कभी कुछ देर मौन रहकर भी हम अपने मन को शांत करते हैं। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कभी आप अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं? आपके मन का सुकून कहाँ बसता है? कौन सी जगह, कौन सा साथ, कौन सी आदत या कौन सी बात आपके भीतर को शांत करती है? तो आज यही बात साझा कीजिए हमसे। हो सकता है कि आपकी बात किसी को मुस्कुराने और संभलने की वजह दे जाए। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए
1: जी। दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: लोकेंद्र जी, क्या हालचाल हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: इन दिनों तो दीदी बहुत भीषण गर्मी एमपी में चल रही है, बिल्कुल सभी जगह गर्मी बहुत तेज है। उसके अलावा जो कि लू चल रही है, उससे बचने के लिए भी सभी श्रोताओं से निवेदन है दीदी, क्योंकि ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, और घर से निकले वो भी पानी की बोतल साथ में लेकर, और अपने जो कि तौलिया से अपना माने मुंह बांध कर, और सर पे कोई माने कंचा फंचा डाल के बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सर ढक के और मुंह ढक के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस पे जो शरीर पे धूप तेज पड़ रही है तो उसके लिए अपने ही नुकसान के लिए अपन नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हो सके तो अपने जेब में एक प्याज की गठिया भी डाल के जाएं, तो उससे लू लगने की बहुत कम चांस रहते हैं।
0: तो चलिए, लू से बचाव के उपाय तो आपने बताए, अब हम चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं, आपको एक उद्वेलन होता है, तो सुकून की तलाश में आप किस दिशा में जाते हैं?
1: जी दीदी, उसे तो देखो एक बात है कि हर इंसान हर प्रकार का होता है, और हर जगह अपना अपना माने जो सुकून मिलता है वहां जाता है, लेकिन सबसे अच्छा सुकून तो मैं एक ही बात कहूंगा, जो कि मंदिर में सुकून मिलता है, अपने भगवान के दरबार में बहुत सुकून कहीं नहीं मिलता है। अपने अपने माता पिता नो जो सुकून मिलता है और जो मंदिर में मिलता है, वो इसके सिवा और सुकून कहीं नहीं मिल सकता है।
0: क्या बात है। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो आप मंदिर चले जाते हैं, ये आप कह रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर जाते हैं, जो कि बजरंग बली का मंदिर में, तो वहाँ जो कि भगवान के दरबार पे हमको ही नहीं मैम सभी लोगों को सुकून मिलता है, और वहाँ पर इतनी शांति मिलती है।
0: जी, ये हमारी आस्था विश्वास का विषय होता है। दरअसल बात ये होती है कि कोई भी धर्म स्थल जो होता है, वहाँ जब समूह में लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जो एकत्रित होते हैं, उनकी सामूहिक जो ऊर्जा है समर्पण की, आस्था की, भक्ति की, प्रेम की, वो काम करती है वहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
0: जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा लोकेंद्र जी कि जब आप बेचैन होते हैं तो आप ईश्वर की शरण लेते हैं, और आपने कहा कि माता पिता के पास बैठते हैं। बिल्कुल सच है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ बाप के साये में एक अजीब सा सुकून होता है, वो दो शब्द कह देते हैं, आपके सिर पर हाथ फेर देते हैं, कह देते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इतने से ही बात बन जाती है।
1: उनके आशीर्वाद से मैम, बिल्कुल पहला आशीर्वाद तो अपने माता ही पिता है जो भी कुछ है।
0: बिल्कुल,
1: उनके माता पिता की सेवा और कोई नहीं है। उसके अलावा जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति मिलती है, और सभी लोगों से निवेदन भी मेरा यही है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, और आजकल इतने बच्चे लोगों

0: को जो मोबाइल से इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कोई बच्चे को इतनी लत पड़ जाती है, कोई गेम खेलता है कुछ करता है, तो हर वक्त अपने माता पिता को टाइम नहीं देते हैं। जितना होता है कहीं भी जाए, चाहे रिश्तेदारी में चाहे कहीं भी, तो मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, मोबाइल ही
1: बिल्कुल।
0: चलाते रहते हैं।
1: और बच्चों
0: उससे
1: को
0: देखो
1: इसका असर
0: अपने
1: ये
0: लिए
1: होता है।
0: खतरा है, नुकसान, अपनी आंखें भी कमजोर होती हैं,
1: जी
0: और अपने माता पिता जो बैठे उनको भी टाइम नहीं दे पाते। उनसे भी कुछ बातें करो, उनके पास बैठो, उनसे हालचाल पूछो, उनकी सेवा करो, तो भी अपन को आशीर्वाद देते हैं। और अपने माता पिता हैं, अपने देखो अपन को ही करना है, तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल में कम से कम टाइम दें, और अपने अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, उनका
1: बिल्कुल।
0: ध्यान रखें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें।
1: तो लोकेंद्र जी, आपने एक अच्छी बात कही कि स्क्रीन टाइम चूंकि बच्चों का बढ़ रहा है, तो इससे भी एक एंजाइटी होती है बच्चों में, एक बेचैनी रहती है, उन्हें लगता है कि एक घबराहट है ना,
0: बिल्कुल
1: इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तो आज
0: बिल्कुल
1: आपने इस विषय पर एक अच्छी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने विचार रखे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ, मैं गांव रणथंभौर जिला शाजापुर से हसन खां मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: हसन खां मंसूरी जी, कितने दिनों के बाद फोन किया है?
1: पहली बार फोन किया मैम हमने।
0: अरे वाह,
1: मैं रेडियो लेकर बहुत साथ में घूमता रहता हूँ और बिल्कुल रेडियो से मेरा बहुत प्रेम है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आज की जो जिंदगी है मैम, माल के हवस में और वो हवा के हवस में जो आदमी जो इधर उधर भटक रहा है, जो भटकने के बजाय वो उसकी सांसारिक जीवन का जो अंत है वो छोटा सी चीज लेके जाएगा। वो इतनी बड़ी दुनिया को जिंदगी को जीकर आया है इंसान जिंदगी में जीने के लिए, तो उसका मकसद ये है कि हम अपने मालिक की बंदगी के साथ उस पे जो मिला है उस पे हमें भरोसा करके उस पे ही हमें जीना है।
0: तो ये तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात हुई। तमाम बातें जानने के बाद भी मन कभी कभी बेचैन होता है हसन जी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जब ये बेचैनी होती है तो आप कौन सा उपाय करते हैं कि आप शांत?

0: अब ये देखो मैडम, ये तो है कि जो सरलता का जो मन है, जो भाव है, जो हमारे जो इसके अंदर है, जो है उसी पर संतोष करना पड़ेगा, बस मेरी तो एक ये राय है मैम।
1: तो आप संतोष तो करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि आप बहुत बेचैन हैं, आपको दुख हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ऐसी स्थिति में भौतिक रूप से आप क्या करते हैं? कुछ लोग किताबें पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग बच्चों के बीच चले जाते हैं, कुछ लोग प्रकृति के बीच चले जाते हैं।
0: खेती किसानी वाले हैं जी, और मैं आप रेडियो सुनता हूँ, जो मानसिक तनाव का जो भाव प्रभावित होता है, तो मैं एक विविध भारती, चाहे वो भोपाल का हो या इंदौर का हो या कोई बंबई का हो, उसको सुनकर हम संतुष्ट।
1: वाह क्या बात है। तो आपका कहना है कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं तो विविध भारती सुनते हैं, जिससे आपका तनाव कम होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा हसन खां मंसूरी जी कि आकाशवाणी यानी रेडियो आपके लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है, इलाज की तरह आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसी तरह से रेडियो से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद महोदया। मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास सिंह तोमर जी, कैसे हैं?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो सुकून की तलाश में किस ओर चलते हैं आप?
1: जी, जब जब जीवन के क्षण विघटित हो जाते हैं तब तब मैं रेडियो को और चलता हूँ। चेतना की किरण तब रेडियो बनता है मेरा।
0: तो आकाशवाणी समाधान प्रस्तुत करता है।
1: बिल्कुल, मनोरंजन भी और सटीक सूचना भी देता है और शिक्षा प्रद बातें भी देता है आकाशवाणी
0: जी। लेकिन इसके अलावा रेडियो तो आपको सहारा देता ही है, संबल है आपका।
1: इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ।
0: किस तरह के
1: सामाजिक कार्य? कोई है जैसे मैं सुबह उठ के 2 घंटे झाड़ू लगाता हूँ, गांव गली की सफाई, मंदिरों की सफाई। 14 वर्ष का नियम हो गया मेरा, ये प्रतिदिन 2 घंटे करता हूँ।
0: क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो बहुत बेचैन होने का वक्त भी नहीं होता। जी जी। तो हरविलास सिंह तोमर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया। बहुत आभार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, अपना परिचय दें।
1: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जिला विदिशा।
0: भागचंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: आज के विषय पे कहेंगे दीदी, जैसे आप बेचैनी होती है, कोई टेंशन में होते हैं, तो हम तो धार्मिक स्थल पे भी जाते हैं, वहाँ पे अपना मन बहला लेते हैं। और संतुष्टि रखना सहनशीलता जरूरी है।
0: तो आप किसी धार्मिक स्थल का रुख करते हैं जब बेचैन होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी
0: जी। इसके अलावा और कोई उपाय?
1: नहीं दीदी, और हम तो ऐसे ही हैं कि देखो, सहनशीलता जरूरी है। अगर कोई टेंशन में दिमाग है तो उसके इलाज सहनशीलता रखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों के साथ बातचीत करने लगते हैं, इससे भी कुछ मन हल्का होता है ना? कई बार बुजुर्गों के पास मन हल्का होता है।
1: बिल्कुल
0: जी जी। तो चलिए भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आज के विषय पर अपना विचार रखा।
1: दीदी कैसे हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: आप तो, हम तो दीदी बहुत बढ़िया है। दीदी हम पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो भागचंद साहू जी, ऐसे ही स्वाद बिखेरते रहिए। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने विचार रखा। बहुत बहुत

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: जी, हम जिला मिर्जापुर गांव नदौली से शुभाकांत बोल रहे हैं।
0: शुभाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी जी, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी धूप का आनंद ले रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं हम।
0: धूप का आनंद ले रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है ना। अच्छा शुभाकांत जी, हम जानना चाहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहेंगे?
1: हमारा यही कहना है कि हम रेडियो बहुत, मतलब जब आ रहा हमारा जिंदगी जब हो जाता है तो हम यही रेडियो सुनते हैं, संगी साथी के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते टहलते हैं, मन हमारा लगता है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं तो सबसे पहले आप रेडियो के पास जाते हैं, ये आपका कहना है, और खेलते हैं।
1: म्यूजिक सुन लेते हैं तो दिमाग हमारा

0: फ्रेश हो जाता
1: है। अच्छा, तो संगीत एक जादू सा असर करता है। बात सही है कि संगीत को तो थेरेपी की तरह भी आजकल हम प्रयोग में लाते हैं ना।
0: जी, हमारा जिंदगी ज्यादातर सुकून नहीं उसे होता है, हम लोग रेडियो के बाद हम लोग संगीत साथी जाते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, हम लोग घूमते
1: खेलते हैं। कैसे खेल खेलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं?
0: हम लोग चुहा छुपाई खेलते हैं और चोर सिपाही खेलते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। खेल तो एक स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम है ही, तो आप खेल पाते हैं और घर से बाहर निकलकर खेलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
0: खेलने से हमारे शरीर को तो क्षमता बढ़ती है ना।
1: खेलों से आप मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी सशक्त होते हैं।
0: जी जी, हमारा भी श्रोताओं से यही अनुरोध है कि आप घूमे तो खेले, अपने बहुत अच्छे आनंद ले।
1: जी, और आपने कहा कि हम बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप परेशान हो, आपका मन बेचैन हो, तो अपनी बात किसी से जब हम कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना, और उसका समाधान भी मिलता है।
0: अपनी बात कर दिया जाए तो बहुत हल्का हो जाता है कि चलो इससे भी कह दिया भाई, मन कुछ सहारा होगा हमारा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो परेशानी के बीच संवाद की स्थिति बनी रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, तभी हम सुकून की तरफ चलते हैं। तो शुभाकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो उपाय बताए हैं, मुझे लगता है कि बाकी के जो हमारे श्रोता हैं उन्हें भी इस पर अमल करना चाहिए, है ना। खेल की आपने जो बात की है, खेलों से बहुत दूर होते जा रहे हैं हम आजकल, तो खेलों की तरफ जब हम लौटते हैं तो यूं ही परेशानी कम होने लगती है। तो शुभाकांत जी, आज आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार रखे, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक

0: हेलो
1: जी नमस्ते दीदी, मैं जगत सिंह चौड़ार ग्राम पिपलिया बराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहा है दीदी।
0: नमस्कार जगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी जी
0: कैसे हैं
1: जी? बढ़िया है दीदी।
0: आज की
1: पहले तो हमें आपसे बात करके बहुत खुशी होती है।
0: हाँ, हमें भी अपने श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज के विषय पर क्या कहेंगे
1: जी मैडम जी? आज क्या है कि जो कोई सी चीज के टेंशन हो जाए तो अपन मनोरंजन में काट देते हैं समय।
0: अच्छा, जब आप बेचैन होते हैं तो मनोरंजन में समय काटते हैं।
1: जी अपना
0: और
1: रेडियो चालू करा तो उसमें अपन ने जो दिमाग खराब कछु में भी हो गया
0: जी जी
1: तो अपन रेडियो से लगान है अपनी ज्यादा।
0: हाँ हाँ जी,
1: तो उससे अपन मनोरंजन से अपन सही हो जाते अपना दिमाग।
0: जी तो गीत संगीत सुनते हैं, अच्छी बातें सुन

0: इतनी अच्छी बात मिलती है और देश विदेश की खबर मिलती है और आप सब जगह की ऐसी बातें मिलती हैं कि उससे अपन को दिमाग में समझ में चल जाएगा। जैसे कोई दुर्घटना होती है गाड़ी वाहन से तो वो भी अपन समझ के चलना चाहिए। जी बहुत सी चीजें हैं।
1: बहुत सी बातें आपको रेडियो के माध्यम से मालूम होती हैं।
0: जी
1: तो हालांकि हमारे बहुत से श्रोताओं ने कहा कि हम रेडियो सुनते हैं जब मन का सुकून तलाशते हैं, तो इसके
0: जी
1: अलावा और क्या उपाय करते हैं आप?
0: जी अब वो उपाय तो यही है अपनों, तो क्योंकि अपन तो अब जैन दुकान है तो इसमें समय पास होता है
1: तो दुकान
0: जाने
1: में
0: के
1: बैठ
0: बाद।
1: जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं और रेडियो साथ में जब आपसे बातें करने लगता है तो आपका मन शांत होता है। तो जगत सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो से जो आपकी ये मित्रता है ये बनी रहे, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया।
0: जी नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम, मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 छत्तीसगढ़।
0: सुरेश कुमार सारथी जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम, अभी तो भीषण गर्मी है और नौतपा भी लग चुका है।
0: जी जी जी जी, तो भीषण गर्मी के बीच हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब कभी जिंदगी में आप बहुत बेचैन होते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो अपने सुकून की तलाश कहाँ करते हैं, क्या उपाय करते हैं?
1: सुकून के उपाय तो दो तीन उपाय करते हैं मैम, जैसे कि गीत संगीत सुनना है, रेडियो सुनना है, अच्छे अच्छे भजन सुनना है, पुस्तक पढ़ना है, पेपर पढ़ना है मैम।
0: वाह, किताबें पढ़ते हैं आप, किस तरह की?
1: सब संग्रहालय में जाके अनेक प्रकार के किताब पढ़ते हैं मैम।
0: अच्छा।
1: कहानी वगैरह है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है।
1: या मौखिक सामान्य ज्ञान है।
0: बहुत अच्छी बात है सुरेश जी, आज के समय में आप जाते हैं किसी लाइब्रेरी में और पुस्तकालय में जाते हैं और पढ़ते हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है।
1: हाँ। हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है मैम।
0: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: साथ में पेड़ पौधा लगाते हैं मैम, अभी तो

0: बरसात आने वाली है तो बिल्कुल हम दो चार पेड़ उगाएंगे, उसका देखभाल करेंगे मैम। भागदौड़ की जिंदगी में सुकून तो कहीं ना कहीं हमको अब तो करना होता है।
1: बिल्कुल। तो सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जब आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप जो उपाय करते हैं वो ये है कि पहले तो गीत संगीत सुनते हैं, है ना?
0: बिल्कुल, रेडियो तो हमारा एक संगीत के बहुत बड़ा मायने रखता है मैम। रेडियो हम डेली सुनते हैं मैम।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है।
0: चाहे हम दुखी रहें चाहे सुखी रहें, रेडियो सुनना तो हमारा एक हिस्सा है हमारे जीवन
1: जी।
0: का। हम 40 साल से रेडियो सुन रहे हैं मैम।
1: जी जी, तो रेडियो आपके दुख सुख का साथी है ना?
0: दुख का साथी है मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सब बात एक बात मैम, हमारे जीवन में चिट्ठी पत्री लिखना बहुत एक अहम भूमिका है मैम।
1: अच्छा।
0: जितने भी आकाशवाणी केंद्र में है, आपके भोपाल में भी हमारे पत्र जाते रहते हैं। हम अनेकों जगह के आकाशवाणी में फरमाइशी पत्र भेजते हैं मैम।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी आदत है ये।
0: भोपाल है
1: जी,
0: अपना श्रीनगर है, छिंदवाड़ा है, रोहतक हरियाणा है, दिल्ली है, और हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है, रायपुर, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर।
1: जी जी जी, तो सभी जगह आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चिट्ठियों का जो संसार है वो अब लगभग समाप्त सा है। हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता हैं वही इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। तो आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, रेडियो सुनते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप पुस्तकालय जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, है ना? तो आप किताबों का साथ करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है जी। तो सुरेश कुमार जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। आप तक भेजते
0: बहुत,
1: हैं
0: बहुत,
1: एक प्यारा सा गीत।
0: मैम, हमारे सारथी परिवार की ओर से आपके केंद्र के पूरा यूनिट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: रमेश शाह बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश शाह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार जिले से का रहने वाला हूँ।
0: बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा,
1: जी
0: तो हम जानना चाहते हैं रमेश जी कि जब कभी जिंदगी में आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो खुद को कैसे संभालते हैं? सुकून की तलाश में क्या करते हैं आप?
1: जी तो अपने तो घर में मिल माल के रहना चाहिए जी,
0: मिलके तो
1: ऐसे
0: रहना
1: ही
0: चाहिए, लेकिन होता यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं या जिंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन बहुत बेचैन होता है, दुखी हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब कभी आपके मन की शांति छिन जाती है, तो मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं?
1: बस जी अपना प्रेम से ही रहना चाहिए अच्छा से जी।
0: बच्चों के साथ खेलने से भी कई बार अच्छा लगता है,
1: हाँ जी, तो ये तो बात सही है।
0: तो आप बच्चों का साथ करते हैं?
1: हाँ जी, बच्चे के साथ भी बैठे हुए हैं जी।
0: तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतता है। जब कभी आप बहुत तनाव में हो, तो उनकी जो निश्चलता है, उनकी जो मुस्कान है, सारा तनाव दूर कर देती है ना?
1: जी।
0: तो चलिए रमेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से बने रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं सरिता शर्मा गुना से बात कर रही हूँ। मैं शिक्षक हूँ।
0: अच्छा आप पढ़ाती हैं?
1: जी।
0: किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: मैं 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: क्या बात है, तो बच्चों में संस्कार डालने का आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी।
0: तो हम ये जानना चाहते हैं सरिता जी कि आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसमें बहुत सी चिंताओं में हम उलझ जाते हैं और बहुत बार मन बहुत बेचैन हो जाता है ना। सुकून की तलाश हर इंसान को है, तो मन की शांति के लिए, सुकून के लिए आप कौन से उपाय अपनाती हैं जब आप बेचैन होती हैं?
1: मन की शांति के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, जिससे कि मन की शांति मिले। और भगवान की भक्ति में संगीत सुनते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, या कोई भगवान का जाप मन में करते रहते हैं तो उससे भी शांति मिलती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल। नाम जप जब हम करते हैं तो भीतर हमारा जो है वो ठहराव एक पैदा होता है ना, स्थिरता आने लगती है। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करती हैं?
1: अधिकतर तो मैं यही उपाय करती हूँ, भगवान के मंदिर में बैठ जाती हूँ, थोड़ा ध्यान लगाना और ये संगीत सुनना। कभी कभी फिल्मी संगीत में भी कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको भी सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है।
0: बिल्कुल, फिल्मी गीतों में कई बार
1: रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मैं रेडियो अधिकतर सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: अब कार्यक्रम का तो ऐसा नहीं है, मेरा फिक्स नहीं है। मैं जब भी ऑन करती हूँ तो कोई ना कोई, जैसे आकाशवाणी भोपाल है और अपना FM है, गुनाका है, तो ये मैं कुछ कार्यक्रम इसमें सुनती रहती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सरिता जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि जब कभी आप बेचैन होती हैं तो भक्ति संगीत सुनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नाम जप करती हैं। सच है कि जब हम बेचैन होते हैं और मौन हो जाते हैं, मौन होकर भीतर ही भीतर जब नाम स्मरण करते हैं तो मन बहुत स्थिर होता है और हमें बहुत सुकून मिलता है। और इसके अलावा गीत संगीत की आपने बात की, सच है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समाधान की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। ऐसे बोल होते हैं कि आपकी बहुत सी परेशानी कई बार दूर हो जाती है उन बोलों को सुनकर। तो सरिता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज अपने मन के सुकून के जो रास्ते आपने हमारे साथ बांटे वो सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी को थोड़ा सहज, थोड़ा और सुंदर बनाने वाले एहसास थे। इसी तरह कोशिश करके अपनी जिंदगी में सुकून के रास्ते तलाशते रहिए, क्योंकि जिंदगी है तो संघर्ष भी है, थकान भी है, चिंताएं भी हैं, अवसाद भी है, मुश्किलें भी हैं, लेकिन इन सब के बीच अपने लिए कुछ पल सुकून की तलाशना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि भागती हुई इस जिंदगी के बीच आप अपने लिए कुछ पल सुकून के जरूर बचाकर रखेंगे। इसी संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों सरकार और पार्टी गठबंधन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार जिला स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन तक 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप फुटबॉल के ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने कल मालदीव को 11-0 से हराया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है लता मंगेशकर की आवाज, इंदिवर का गीत, संगीत है कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है सुहागरात। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, विश्वनाथ साहू, गुलाब दास मानिकपुरी और भागवत वर्मा, इन्होंने दतरेंगी से ये पत्र लिखा है हमें।

पतंगा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाज। राजेंद्र किशन ने गीत लिखा है, संगीत है सी रामचंद का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित और छोटू के साथ डुंडुन और समस्त परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है किशोरी बोस, प्रियंका, बसंत, सरोज, अजीत, मोनिका, हिमांशी और नितिन ने। इनका साथ दिया है आशीष और ममता ने भोपाल से। तो आइए सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, जान निसार अख्तर के बोल हैं, संगीत जयदेव का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका, वंश और हार्दिक ये इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इस गीत को पसंद किया है राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके समस्त परिवार ने। ये पत्र हमें मिला है सिंहपुर बड़ा से, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और साथियों ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। रूपाली मालवी, अर्चित मालवी, सुमन मालवी का पत्र हमें मिला है होशंगाबाद रोड भोपाल से। तो आइए सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जंगली फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, हसरत जयपुरी के बोल है संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय इस गीत को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित के साथ हैप्पी राय ने ये गीत सुनने की ख्वाहिश जताई है।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला पंचतंत्र, आज सुनिए इसकी 13वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र का पांचवां प्रकरण अपरीक्षित कारक सुनना प्रारंभ किया, जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर सुनो।
2: कहो मित्र।
1: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
2: अच्छा।
1: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्यकुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद चारों मित्र उद्भट विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने परामर्श किया।
2: क्या?
3: मित्रों, आज हमें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
4: हाँ, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
5: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।
6: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
4: अवश्य अवश्य अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए? यहां तो दो रास्ते हैं।
3: वो देखो मित्र, किसी वणिक की शव यात्रा जा रही है।
4: ये देखो,
3: क्या
4: ग्रंथ में लिखा है, महाजन जिस मार्ग से जाए अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए।
3: अच्छा,
0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा। तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,

0: मित्रों तनिक ध्यान दें।
1: हाँ।
0: इसमें लिखा है उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर शत्रुओं से घिर जाने पर राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
2: मित्रों अर्थात ये गर्दभ हमारा स्वजन है तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ मित्रों गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
3: भद्रगण हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है जरा देखो तो।
4: मित्र ये तो ऊंट है।
2: अच्छा।
4: ये तो अत्यंत तेज गति से चलता है।
2: मित्रों चिंता ना करो चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
4: अच्छा
2: अब देखो इसमें लिखा है धर्म की गति तीव्र होती है।
4: हाँ, हाँ, हाँ।
2: हो ना हो ये अवश्य ही धर्म है।
4: धर्म है।
0: क्या ये धर्म है?
2: हाँ।
0: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
3: बिल्कुल उचित है बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
2: हाँ, चलो मित्रों
3: चलो चलो, चलो, चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे मित्रों, थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर लेते हैं।
2: विश्राम करते हैं।
3: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर ले।
2: चलो।
1: परंतु मित्र ठहरो, इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो
2: भी ठीक है,
4: बिना जाने स्नान करना ठीक नहीं है।
3: परंतु मित्र, आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए एक पलाश का पत्र बह रहा है। डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
2: अच्छा?
3: हाँ, अब मैं तो चला स्नान करने।

0: बचाओ बचाओ।
1: अरे अरे मित्र, ये तो डूब रहा है।
2: अरे
1: अरे महाराज का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
2: अरे
1: ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई, मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
1: कोई तो बचाओ उसे।
2: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ तो प्रयत्न करो भाई। अरे अरे ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
3: चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
1: पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो।
3: इसमें लिखा है, सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
1: अच्छा।
3: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
2: ऐसा लिखा है?
3: हाँ हाँ, यही लिखा है।
2: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का मोह छोड़ देता हूँ,

0: कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्तिकारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए, लोगों के उपहास के पात्र भी बने। हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है। हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध,
0: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है। अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता, तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती, उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, जिससे मैं घर जा सकूं।
1: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है, और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
0: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो। यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के रहने योग्य नहीं है, और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं बाबा, मैं तो चलता हूं।
1: नहीं, स्वर्ण सिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध।

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमरशक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमरशक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

0: मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु, मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्यों नहीं?
1: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
2: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
3: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाएं।
4: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
5: प्रणाम पिताश्री।
3: आयुष्मान भवा।
0: स्वागत है आचार्यवर, आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।
4: नहीं महाराज, चिंता चिता समान होती है। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर खाया जाता है, और अब आपके ये तीनों पुत्र आपकी सारी चिंताएं ले लेंगे।
3: महामंत्री सुमति, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं।
5: नहीं पिता महाराज, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं। राजा को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पूरे तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है। चाहे तो आप हम तीनों की परीक्षा ले लें।
3: पुत्र, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे? ये आपके खाने खेलने के दिन है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
6: खाने खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है महाराज। हम तीनों भाई चाहते हैं आप अब किसी भी प्रकार से अपने को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देंगे।
1: पुत्र बहुशक्ति, आप सब में बड़े हैं, आप हमें बताएं एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं।
6: सर्वप्रथम महामंत्री सुमति को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, एक सच्चा मित्र कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, हर सुख दुख में आपके साथ होता है, आपको सही राह दिखाता है।
3: अद्भुत, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
7: महाराज, अधिक प्रसन्नता दर्शाना भी राजा के लिए उचित नहीं है। ये वो पल होते हैं जिनकी प्रतीक्षा शत्रुगण करते हैं। राजा को सर्वदा अपने क्रोध और प्रसन्नता के साथ दुख को भी सीमित रूप से ही दर्शाना चाहिए। मेरे अधिक बोलने के अपराध को क्षमा करें पिता महाराज।
3: नहीं नहीं पुत्र, आप सबकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत घोल दिया हो।
5: पिताश्री, गुरुदेव बहुत दूर से पैदल आए हैं, वह थक गए होंगे, उनके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं यह कार्य करूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवता का रूप होते हैं। अपने भोजन से आधा भाग अतिथि को देना पुण्य होता है। उनके पैर धोने से कन्या के लिए योग्य वर मिलता है। अतिथि नारायण का रूप है।
3: आपका कथन सर्वथा उचित है वत्स। हे आचार्यवर, मैं किस प्रकार आपका सम्मान करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है, परंतु मैं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं कि आपको 100 गांवों का आधिपत्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं गुरुदेव?
4: नहीं महाराज, नहीं। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं कि मुझे धन, भूमि इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के संध्या काल में अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। महाराज, आपके पुत्रों का जो दायित्व मैंने लिया था मैंने पूर्ण किया। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे देने वाले धन से अपने राज्य में एक शिक्षा

0: स्थान बनवाएं जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान दे सके। आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
1: आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। महामंत्री सुमति, आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू करवा दें और पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि आज मेरे पुत्रों के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

हमारी ये पंचतंत्र की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। आप सबका साथ बड़ा आनंददायी रहा, आशा है आप सबने भी आनंद लिया होगा। हमारी ओर से आप सबको सादर नमस्कार।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र का भाग 13। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

भाई और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नई पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन किया। श्री चौहान ने इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सरकार और पार्टी संगठन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव कल खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन कल 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1 बजे हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

नमस्कार सखियों, महिला सभा लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी नीलम चौरे। और ये सब संभव हो पाया है सखियों रेडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाने का। रेडियो एक ऐसा सफर जिसने समय के साथ कदम मिलाते हुए हर दिल तक अपनी आवाज पहुंचाई। आकाशवाणी 90 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आपसे बातों का सिलसिला। सखियों कहते हैं हर वक्त कामयाबी साथ नहीं होती, कोई भी हार आपके हौसले से बड़ी नहीं होती। वाकई सखियों अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मन निराश हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम

को दूसरों से कम समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में सखियों असफलता अंत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा भी गया है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। सखियों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं हताश निराश, तो कुछ लोग उसी से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। सखियों, माना कि हम महिलाओं के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन इन सब के बीच जो सखियां हार नहीं मानती, वही आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाती हैं। सखियों, हमें यह समझना होगा कि असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, सही दिशा दिखाने के लिए आती है। कभी कभी अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब यह नहीं कि हम उस काम के योग्य नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना है, पूरी बौद्धिक क्षमता और मेहनत के साथ। सखियों, जब भी असफल हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।

ऐसा ही साथ है सखियों हमारा और आपका सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी है। और वो योजना है सखियों प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान योजना, जिसकी शुरुआत की गई। यह योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब बेहतर रूप से आगे बढ़ाया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वस्थ रहें और पढ़ाई में भी रुचि बढ़े। इस योजना से बदलाव आया सखियों। अब सरकारी सहायता स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन तो दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार हुआ और स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ी, साथ ही कुपोषण की समस्या भी कम हुई। इसके साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, जिसमें महिलाओं को भोजन बनाने का काम मिल रहा है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। सखियों यह योजना केवल भोजन देने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को उनके स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने का सफल प्रयास है। सखियों हमारे आसपास कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, संतुलित पोषण आहार देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार तो काम कर रही है बखूबी, हम भी उनके इस काम को सफल करें। और अब बारी है सखियों गीत सुनवाने की, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो क्यों अब समय हो रहा है आपको किसी ऐसी सखी से मिलवाने का जो आत्मनिर्भर है। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, आज की महिला केवल सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें साकार करने का साहस भी रखती है। खाना बनाना, मेहमान नवाजी और स्वाद जो कभी केवल घर तक सीमित माने जाते थे, आज वही हुनर महिलाओं को स्वरोजगार और पहचान दिला रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला से बातचीत करने वाले हैं सखियों, जो एक कैफे की सफल संचालिका है। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती अमृता मनदीप सैजल, जो कैफे की ओनर हैं और अपने कैफे के माध्यम से न केवल स्वरोजगार कर रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी आपका हमारे कार्यक्रम में मेरी उड़ान में।
1: नमस्कार नीलम जी।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोता सखियों को यह बताइए कि कैफे खोलने का विचार आपके मन में कैसे आया?
1: हाँ जी नीलम जी, ये जैसे आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि खाना बनाने का शौक और खाना खिलाने का शौक, ये दोनों शौक मुझे बचपन से ही हैं। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो खाना, ये दोनों शौक मेरे खून में ही हैं। मैंने बचपन से देखा है, मेरे मम्मी होम साइंस के स्टूडेंट थे और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और मेरे डैडी उनकी पूरी पूरी मदद करते थे और मेरी मम्मी के पास एक उनकी होम मतलब कुकरी की किताब थी, तो उस कुकरी बुक से देख देख के खाना बनाना सीखती थी और वो मुझे खाना बनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो वो खाना बनाते बनाते इतना शौक बन गया और फिर मुझे तारीफें मिलने शुरू हो गई, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लग गया। और मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने क्या मतलब बड़ी बड़ी मतलब राजमा चावल बनाने शुरू कर दिए, पकौड़े, घर के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए और मेरी सखियाँ मतलब मेरी फ्रेंड्स क्या हैं घर पे खाना स्पेशल खाना डिमांड करके घर पे आना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब उन्हें अच्छा लगने लग गया मेरे हाथ का खाना और रिश्तेदारों को भी अच्छा लगने लग गया। और एज सच मैंने स्टडीज में एमबीए किया हुआ है तो, और तो थोड़ा व्यवसाय की तरफ मेरा माइंडसेट है।
0: इसका मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी डिशें बना लेती हैं और आप इसी फील्ड में मतलब जाने का आपने सोचा?
1: 2021 में मेरे फादर इन लॉ के एक्सपायर होने के बाद हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए, तो हमारा यहाँ पे व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस क्षेत्र में नया कुछ करने का सोचा और इसलिए हमने कैफे ओपन करने के बारे में विचार विमर्श किया।
0: तो जब आपने कैफे शुरू किया तो शुरुआत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
1: देखिए, व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी भी इसके किसी भी फील्ड में आप बिजनेस ओपन करें तो कठिनाई आती ही आती है। ऐसे ही कैफे के क्षेत्र में भी बहुत कठिनाई आई और एक महिला होने के नाते कह लीजिए, चाहे आप एक व्यक्ति विशेष के रूप में कह लीजिए, कठिनाई तो आती ही है। जैसे कि शुरू में बहुत लोगों ने बोला कि आपको लॉस होगा, इंदौर में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो नई नई डिशेस ट्राई नहीं करते हैं, वो पुराने पोहा जलेबी से ऊपर नहीं उठते हैं, आपको कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। मगर मुझे ऐसा लगा कि टाइम के साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता है, टाइम के साथ साथ लोग ऊपर मतलब अपने स्वाद के अनुसार नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए अपने कैफे में नए नए प्रयोग लेके आए ताकि लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें।
0: बहुत अच्छी बात है अमृता जी। और जैसा कि एक महिला उद्यमी हैं आप और महिला उद्यमी होने के नाते क्या आपको कोई विशेष कठिनाई या कोई अनुभव आप जो बताना चाहें?
1: देखिए, कैफे का अनुभव एक डिफरेंट अनुभव होता है। कोई भी लोग कैफे में क्यों आना पसंद करेगा, वही कॉफी आप घर में बैठ के भी पी सकते हैं और कैफे में भी आके पी सकते हैं। कैफे में आपको जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं, आप एक एक्सपीरियंस के लिए कैफे में आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे कैफे में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इंटीरियर है, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी स्किल्स जो रहती हैं, जो हमको आपको कोजी वाइब्स मिलती हैं, जो आपको वेलकमिंग जो वहाँ पे महसूस होता है, वो हमारे कैफे में वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे हमारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, हम आपको वहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होने देते हैं। हमारे कैफे का इंटीरियर बहुत अच्छा है जो मैंने खुद किया है, खुद लोगों को ध्यान में रख के, बच्चों को, आज की जनरेशन को प्रेरित करके कोटेशंस कुछ ऐसी लगाई हैं जो बच्चे को लोगों को मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। और हमारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो वहाँ पे आते हैं, सिंगिंग करते हैं, बजाते हैं और अपना टाइम अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, इसका भी पूरा अरेंजमेंट रहता है। और जो खाना बनता है वो भी पूरे प्रॉपर हाइजीन और हेल्दी तरीके से बनता है, जैसे पिज्ज़ा बेस रहता है, ब्रेड्स वगैरह रहती है, वो भी बिल्कुल फ्रेश रहती हैं।
0: इसका मतलब आप लोगों के, कस्टमर का काफ़ी ध्यान रखती हैं और उनके खासकर स्वास्थ्य का।
1: देखिए जी, कस्टमर इज़ अ किंग। कस्टमर के साथ साथ अगर आप ये सोचिए कि जब आप किसी कैफ़े में जाती हैं तो आप किस चीज़ों का वो उम्मीद रखती हैं, तो वही चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं कल किसी कैफ़े में जाऊँगी तो मैं किन चीज़ों की उम्मीद रखूँगी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भी उन चीज़ों को अपने कैफ़े में इंक्लूड किया है।
0: बिल्कुल, आपकी जर्नी और आपका सफ़र सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है अमृता जी। तो हम जानना चाहेंगे कि इस सफ़र में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा आपके लिए?
1: देखिए जी, परिवार का सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण था। और यकीन मानिए जी, मैंने तो मेरे माँ बाप से और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप से मैंने कुकिंग स्किल्स का सीखा है और मेरे फादर इन लॉ जो गांव से अकेले आके उन्होंने इंदौर शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं उनको पूरा इंदौर शहर जानता है। और मेरी मदर इन लॉ आज भी मतलब एजड हैं मगर उनको अपना डेयरी फार्म चला रही हैं, तो उनसे मैंने ये व्यवसाय स्किल्स का सीखा भी। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, इस कोई भी काम आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकती हैं। तो ये चीज़ें, ये सब का मतलब क्या है, मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीकों से मेरे माइंड में ये चीज़ें डाली है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब मोटिवेशन, एक परिवार का पूरा मेरे को सहयोग मिला है जिससे मैं आगे बढ़ पाई हूँ।
0: बिल्कुल अमृता जी, आपकी बातें सुनकर हमारी सखियाँ भी सुन रही हैं और आपसे प्रेरणा ले रही हैं। हमारी सखियाँ भी इस व्यवसाय को करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: देखिए, सखियों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाएं अगर व्यवसाय में

0: हैं या महिलाएं व्यवसाय में नहीं हैं, तो अपने आप को कमतर ना आंकिए। और महिलाओं के लिए एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि विरासत में हमें मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। तो महिलाएं इतनी मेहनती हैं, वो अपने आप को कमतर ना आंकें, और अगर वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा रखें, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखें और शुरू में छोटे से शुरुआत करें और फिर बस निकल पड़ें, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। किसी से प्रेरणा ले सकती हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, और जो आपका शौक है, जो कभी आपका शौक रह सकता है, रह चुका है, वो आप उसको व्यवसाय में भी तब्दील कर सकती हैं। अगर आप अच्छी डांसर हैं तो आप डांस क्लास शुरू कर सकती हैं, आप अपनी सिंगिंग क्लास शुरू कर सकती हैं। तो आपके खुद के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को तराशिए, उसको तराशने के लिए आपको खुद से प्यार करना होगा। आप खुद से प्यार करिए, अपने गुणों को तराशिए और अपने व्यवसाय पर ध्यान दीजिए।
1: अमृता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो सखियों, इनसे मिलकर, इनसे बातें कर हमने जाना जो एक सीख देता है, हुनर छोटा नहीं होता। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए।

सखियों, इस गर्मी में रूखे बेजान बालों का आप ध्यान कैसे रखें? आप यही सोच रही है ना? बिल्कुल सखियों, गर्मियों की तेज धूप, पसीना और धूल हमारे बालों की नमी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और बाल रूखे, उलझे हुए और बेजान से लगने लगते हैं, है ना? लेकिन थोड़ी सी सही देखभाल अपनाकर आप अपने बालों को फिर से मुलायम और स्वस्थ बना सकती हैं। रूप लावण्य में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ घरेलू आसान से उपाय। सखियों, सबसे जरूरी बात इन दिनों शरीर को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत होती है, ये तो आप जानती हैं। वैसे ही बालों को भी नमी चाहिए, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और कोशिश करें बालों को बहुत ज्यादा ड्राई ना होने दें। इसके साथ ही सखियों, एक आसान घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं, सखियों दही का इस्तेमाल। सखियों, दही के साथ शहद मिलाकर बालों में लगाएं और ठंडे गुनगुने पानी से बालों को धोएं। जो प्राकृतिक कंडीशनर होते हैं इससे बाल मुलायम चमकदार बनते हैं। और अब दूसरा उपाय है सखियों, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बालों और स्कैल्प पर लगाएं, ठंडक मिलती है और रूखापन भी कम होता है। एक छोटी सी आदत भी बदलना है सखियों, बाल धोते समय हमेशा सामान्य या ठंडे पानी से बाल धोएं, नमी बनी रहेगी। इसी तरह सखियों, तेज धूप के चलते बालों को कॉटन दुपट्टे से ढकना भी अच्छा उपाय है, धूप से तो बचाते हैं साथ ही धूल से भी। सखियों, थोड़ी सी सावधानी बालों में फिर से नमी चमक बरकरार रखती है। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

0: तभी।
1: सखियों आप बढ़ते हैं रसोई की ओर हमारे क्रम फूड जोन में। सखियों तेज धूप बढ़ती गर्मी बस लगता है कि ऐसे में मनचाहे पे मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है जिसको पीने मात्र से ही गला तर और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सखियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिंट नींबू पंच फूड जोन में। सामग्री नोट करें सखियों, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, पुदीने की पत्तियां 4-5, 1/2 चम्मच काला नमक, चाट मसाला वो भी 1/2 चम्मच। आप ठंडाई के लिए 1 कप कुटी बर्फ और अंत में 1 गिलास सादा पानी। आप सखियों इसको बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के रस के साथ उसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, चाट मसाला और शहद को एक साथ मिलाकर मिक्सर में पीस लें। आप ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालें, तैयार मिश्रण को पानी में डालकर खोलें। इसके बाद ग्लास में नींबू की स्लाइस और पुदीने की पत्तियों से सजाकर सर्व करें। इसको पीने से पेट की गर्मी भी कम होती है सखियों, साथ ही पाचन के लिए भी फायदेमंद होगा इस गर्मी में। तो पीजिए सखियों मिंट नींबू पंच जो बिल्कुल सुगर फ्री है। और अब सुनवाते हैं आपको ये मीठा सा प्यारा सा गीत।

सखियों, अब बात करते हैं काम की। सखियों, जैसा कि गर्मियों का मौसम है, तेज धूप और लू भी लेकर आता है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि लू लगने से कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, थकान, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो काम की बातों में लू से बचने के उपाय हैं सखियों, दोपहर के समय जितना हो कम निकलें। यदि काम की वजह से आप जा रहे हैं तो सिर पर दुपट्टे, टोपी या छतरी से अपने आप को ढकें। माना कि छुट्टियां हैं सखियों, घूमने जा रहे हैं, पानी की बोतल साथ रखें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। साथ ही नींबू, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना जैसे तरल पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सखियों, इन दिनों ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन की जगह आप अंकुरित मूंग दाल, मोठ चना का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। साथ ही सखियों, मौसमी

फल खाए, उन फलों को चुने सखियों जिनकी तासीर में ठंडा खो। और सखियों, जब ज्यादा गर्मी यदि आपको महसूस हो तो तुरंत ठंडा पानी यानी फ्रिज का पीने के बजाय मटके का ठंडा पानी लें और कुछ देर आराम करें। खुद भी रहें सुरक्षित और अपने परिवार का भी ध्यान रखें सखियों इस तपती गर्मी में। ज्यादा बेचैनी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सखियों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। तो सखियों, हम बता दें कि कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने और अब दे अनुमति नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: कैसे बुझाए अपनी प्यास, बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत, चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे, बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। सुनवाते हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गायने माड़े लोकगीत। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं अगला गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। इसमें सुनवाते हैं उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। पहले सुनते हैं मोहसिन अलवी की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सूर्य।

0: なっさんさに。なおてじな。なしょうるてんら。
1: ちょびきやれ。
0: なひ、えへんか。केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है। बोल मजरू सुल्तानपुरी के आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ. नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की

0: 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां शिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेलिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह

0: परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: action. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ही फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया है मेरे हुजूर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहा है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये पत्र आया ओम प्रकाश, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और समस्त नेमा परिवार का। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायनी की शब्द रचना संगीत नौशाद का। मेरे महबूब फिल्म के इस गाने को सुना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता सिद्धांत प्रिंस एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से पत्राया शैलेश वैशाली श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर का। इसी गीत को सुना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत साथी फिल्म से है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत है। सुनना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये पत्र आया है बत्ता परिवार का। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। इसी गीत की फरमाइश भेजी। पटेल नगर मलूट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, राहुल देवबर्मन का संगीत, स्वर किशोर कुमार के, और फिल्म है कुदरत।

ये गीत आरजू फिल्म से लिया है जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। इसे सुना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया असमा, सालिया, शोएब खान पोतरा, मुस्ताबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत वक्त फिल्म से है, जिसे गाया आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया रवि ने। सुना चाहा है ग्राम धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड रुस्तम, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पतराया दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा ने।

0: आशा भोसले की आवाज़ में गए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम छाया पाठक को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल के निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। और इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। शाम 5:33 और 6:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर और रात 10:00। छः बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग, इस विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशा में रात्रि 9:30 सुनिएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 आज हम आपको सुनाएंगे पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेजा का ध्रुपद गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:05 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं

डीटीएच पर अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं उमेश भट्ट। सुनते हैं इनकी गाई ये गज़ल।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत तुम बिन फिल्म से लिया है, जिसे गाया चित्रा ने। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा, संगीत निखिल विनय का।

धड़कन फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत और आवाज़ कुमार सानू की।

कामचोर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत जीवन मृत्यु फिल्म से है, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया है, साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीत से सजाया खयाम ने। फिल्म का नाम चंबल की कसम।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए चंबल की कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं डीटीएच पर। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। यह पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची। यहां पर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं और ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेक में वेस्ली सो को हराया और गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम शब्द सागर में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज एक जगह है जहां पर हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत समागम देखने को मिलता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व को आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है और संयोग से आपका नाम भी प्रयाग ही है। प्रयाग शुक्ल जी आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और उनके व्यक्तित्व में भी कला का, आलोचना का, अनुवाद का और भी विधाओं का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इन विधाओं के अंतर्गत जो उनका लेखन कार्य है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनके अंतर संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। शुक्ल जी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में आपका।
3: धन्यवाद आपका बहुत।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि भोपाल से आपका एक लंबा नाता रहा है तो आकाशवाणी भोपाल में आप मौजूद हैं और आकाशवाणी का भी ये 90वां प्रसारण वर्ष चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
3: सबसे पहले तो आकाशवाणी को बधाई देना चाहूँगा। देश की एक ऐसी संस्था है जिसके पास इतना बहुमूल्य भंडार है आर्काइवल, और अब से 90 वर्ष पूरे किए हैं, इसकी खुशी तो हम सबको बहुत अधिक है।
2: शुक्ल जी ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम कई रचनाकारों को देखते हैं कि वो एक ही विधा में अपने जीवन काल में लगे रहते हैं, चुक जाते हैं या उसमें कार्य करते करते थक जाते हैं। आपने कई विधाओं की सम्यक साधना की है तो ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ये संभव कैसे हो पाता है?
3: देखिए ये संभव तो कुछ इच्छा से होता है मेरे ख्याल में, और कुछ परिस्थितियों से भी होता है, कुछ प्रसंगों से भी होता है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के कारण भी होता है
2: जी,
3: कि कोई आपका साथी है उन दिनों का या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इसके लिए प्रेरित करता है कि आप सभी विधाओं में दिलचस्पी लो। तो मेरे साथ तो एक घटना ये घटी थी कि मैं 23 बरस का था जब कल्पना जैसी पत्रिका में पहुंचा था और कल्पना आप जानते हो हिंदी की ऐसी पत्रिका मानी जाती है कि सरस्वती, कल्पना ये दो पत्रिकाएं हैं जिनका स्थान हिंदी के साहित्य में, पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में बराबर की याद किया जाएगा। तो संयोगवश मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ 18 बरस का था तो मेरी दो चीज़ें छप चुकी थी, एक कहानी और एक कविता। तो पहले तो जब मैं पहुँचा कलकत्ता से, कलकत्ता में ही बड़ा हुआ आप जानते हो,
2: जन्म भी आपका वहीं,
3: हाँ जन्म भी वहीं का है, तो वहाँ से पहली बार मैं बाहर निकला था। कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी थी पारिवारिक कि लगा कि नहीं मुझे कुछ कहीं कुछ करना चाहिए, और लिखना पढ़ना तो शुरू हो गया था। तो बद्री विशाल जी उनको कभी भूलता नहीं, बद्री विशाल पित्ती मतलब एक धनाढ्य परिवार का एक युवा
2: जी
3: जिसने कल्पना शुरू की थी।

0: और जो बहुत सारे लोगों को संगीत की दुनिया में, पंडित जसराज, नृत्य की दुनिया में कई लोगों को, और साहित्य की दुनिया में तो सबके साथ उनका एक संबंध बन गया था युवा दिनों से ही, कल्पना के कारण भी, उनकी अपनी रुचियों के कारण भी। तो कल्पना में पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ हर अंक में हम देखा भी करते थे कल्पना के अंक
1: जी,
0: बल्कि हम लोग उन दिनों तो याद है, मैं और मेरे मित्र अशोक सिकसरिया, हम लोग कई एक दो किलोमीटर चल करके नेशनल लाइब्रेरी जाते थे कि शायद कल्पना का अंक आ गया होगा, उसका आकर्षण ऐसा था उन दिनों। तो उसमें प्रतिष्ठित चित्रकारों की पेंटिंग्स छपती थी, रेखांकन आते थे विनोद बिहारी मुखर्जी से लेकर के राम कुमार और भी कई लोग। तो देखा उसको निकट से, कोई फिर उसमें काम करने लगा तो कई चीज़ों से गुजरना ही पड़ता था कि आप सेलेक्ट कर रहे हो कि क्या जाएगा, और या बद्री विशाल जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ सलाह कर रहे हैं या आपके सामने वो खोल कर बैठे हैं, तो एक गहरा आकर्षण पैदा हुआ था
1: जी।
0: और फिर ये था कि कल्पना में, चूँकि उस जमाने में आप सोचिए फिल्म पर भी सामग्री जाती थी, अच्छी सामग्री, और उसके पहले प्रतीक जो हम लोग देख चुके थे अज्ञे का
1: जी,
0: उसमें भी ये था कि नृत्य पर, कला पर, इन सब चीज़ों में पर सामग्री रहती थी। तो ये संयोग बड़े सुंदर मेरे जीवन में बनते चले गए कि हम लोगों ने बिल्कुल युवा दिनों में प्रतीक देखा, कल्पना देखी, दो पत्रिकाएँ खास तौर पर, और उनमें चीज़ें पढ़ते थे, संगीत पर भी कुछ आ रहा है, तो बहुत मन में ये धारणा बहुत गहरे बैठ गई थी कि सभी कलाओं में दिलचस्पी होनी चाहिए। और सच पूछिए तो उस दिलचस्पी के कारण ही ये हुआ कि फिर कल्पना जैसी पत्रिका में रहते हुए भी मैंने हैदराबाद छोड़ दिया
1: जी,
0: इसलिए कि मेरे एक मित्र महेंद्र भल्ला, आप जानते हो, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, कवि भी, वो चिट्ठियाँ लिखते थे, हमारी काफ़ी मैत्री थी कि हमने आज इब्राहिम अलकाज़ी का नाटक देखा, हम राम कुमार जी को मिले, हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। तो सचमुच बिना कुछ सोचे समझे
1: जी
0: मैं दिल्ली पर चला गया, तो कहानी फिर यहाँ से दूसरी से और शुरू हो जाती। अब सबसे परिचय था वहाँ, तो श्रीकांत वर्मा, राम कुमार जी, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती जी विशेष रूप से, इन लोगों को के साथ पहुँचते एक संबंध बना, और मालूम हुआ कि दिनमान निकलने वाला है। तो मैं सोच कर ये आया था कि फ्रीलांसिंग करूँगा और लिखूँगा पढ़ूँगा इन्हीं सब चीज़ों पर, बस शुरुआत हो गई ये कहानी है।
1: तो क्या ये कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले एक विधा में आपने दखल दिया और उसके बाद आपको दूसरी विधा ने आकर्षित किया, तो दूसरी विधा में भी आपने दखल देना शुरू किया और दोनों में काम साथ साथ चलता रहा और इसी तरह आगे बढ़ता गया?
0: नहीं, फिर ये हुआ जब मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली, उस समय की दिल्ली
1: जी जी,
0: कि वो फिर खाली लिखने तक सीमित नहीं थी चीज़ें, इस से फिल्म पर लिखना तो बाद में शुरू किया, किताब भी एक जीवन को गढ़ती फिल्में, और बहुत गहरा आकर्षण है फिल्मों के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए, विश्व सिनेमा की। तो ये हुआ था कि लिखूँ चाहे ना लिखूँ, पर देखते ही हम सब थे, जैसे मैंने यामिनी जी के उस समय की कोई उनका कोई ऐसा डांस रिसाइटल नहीं होगा शायद जो मैंने ना देखा हो। फिर बाद में एक आध बार कभी लिखने का मौका आया तो वो भी किया। अच्छा हाँ, इसे ये चीज़ भी याद आई, देखिए कि खाली देखना या लिखना या दिलचस्पी लेना भी आपके कितने काम आता है। जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा 99 के लगभग, तो एनएसडी में पहुंचा, नेशनल क्लब ड्रामा में, राम गोपाल बजाज में ले गए वहाँ। अब ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि रंगमंच पर इतना तो नहीं लिखा था, दो चार चीज़ें ही लिखी थी, पर उनको ही पता था कि इनकी दिलचस्पी कितनी गहरी है, ये इस काम को कर सकेंगे। तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग निकाली, 12 साल रहा उनके साथ, पूरा देश देखा, उनकी दुनिया से संबंध बना, कला की दुनिया से मेरा संबंध शुरू से था, क्योंकि कला पर सबसे पहले लिखना शुरू किया था। जब मैं फ्रीलांसर था तब भी सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे के सब संपादक थे, तो उन्होंने ही मुझे कला का कॉलम सौंपा था, दो ही चीज़ें मेरी उन्होंने लिखवाई थी, फिर उनके आधार पर कि शायद ये काम कर सकेंगे।

0: उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। 10 साल मैं निर्माण में रहा, कला का कॉलम लिखा, 2-3 साल फ्रीलांसर के तौर पर, फिर अज्ञेय जी मुझे ले आए थे निर्माण में। उन्हीं दिनों 1967-66 में फ्रीलांसिंग करता था, 69 में बाकायदे उन्होंने ज्वाइन कराया जी। फिर वहाँ 10 साल कला का कॉलम लिखता रहा। इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, अनंत यादें हैं
1: जी। जैसा आपने अभी कहा कि मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, लेकिन पढ़ता सब कुछ था, देखता सब कुछ था, क्या जो आज के साहित्यकार हैं, नवोदित और युवा साहित्यकार हैं, क्या उनको भी आप ये शिक्षा स्वरूप कहना चाहेंगे कि आप हर विधा पढ़िए, भले ही आपका लिखने का जो मन है वो एक विधा में हो?
0: ये तो मैं सबसे मिलते ही कहता हूँ, कभी कभी लिखता भी हूँ एक प्रस्ताव की तरह कि करना कितनी सुंदर बात है। अभी तो हाल की घटना देखिए भोपाल की, आपको बताऊं
1: जी,
0: सुदीप सोनी हमारे युवा मित्र,
1: बिल्कुल,
0: इन्होंने अभी एक सिनेकारी करके ये एक कार्यक्रम करते हैं हर साल, तो उसमें मैं भी था इस बरस, तो वो दृश्य देखकर ही मैं इतना प्रसन्न हो गया। उस दिन बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ा कि उसमें संगीतकार हैं और थिएटर के लोग हैं, फिल्मकार तो थे ही, युवा फिल्मकार भी कई थे, तो काफ़ी प्रसन्न हुआ मैं, क्योंकि वो दृश्य ही प्रसन्न करने वाला था, क्योंकि कलाओं की एक आपसदारी, उनका एक दूसरे से उनका साझा तो बहुत गहरा है, और वहीं से सच पूछिए तो आपको चीज़ें मिलती हैं जो सोचने की, कुछ चीज़ों को नई तरह से देखने की, और वो जीवन के अनुभव को भी बहुत गहरा तभी वही करती हैं
1: जी।
0: उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ कर सकती है, क्योंकि देखिए ये बात तो, ये आकर्षण क्यों हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हुई, तुम इसी दुनिया में रहो,
1: बिल्कुल,
0: ये बहुत कुछ तुमको देगी, उसे दिया है मुझे। मैं तो अपने को ये भी यही मानता हूँ कि मेरा जीवन जैसा बना वो बिना कलाओं के नहीं हो सकता था, मतलब वो आनंद उठा ही नहीं सकता था मैं किसी और तरह से, ये तो अपने अनुभव से जानता हूँ
1: जी।
0: कि उस प्रसंग से फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही शायद होता है कि आप उन बड़े रचनाकारों से मिलते हो, या उनके बारे में पढ़ते हो, या उनको निकट से देखते हो, तो ये चीज़ें समृद्ध करती हैं।
1: बिल्कुल, आगे जानना चाहेंगे शुक्ल जी आपसे कि आप एक कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो एक कवि होता है वो एक अच्छा आलोचक भी हो, या इसका उल्टा कि एक आलोचक हो वो अच्छा कवि भी हो, लेकिन जहाँ इन दोनों का या दो विधाओं का समन्वय होता है वहाँ फिर किस प्रकार के तत्व काम करते हैं?
0: वहाँ एक मेरे ख्याल में सहज एक उत्सुकता भी काम करती है कि आप चीज़ों को एक नई उत्सुक निगाह से देखते हो। जैसे मेरी किताब है कविता की भाषा और भाषा का समाज
1: जी,
0: तो उसमें हमारे कई हमसे अग्रज कवियों के, हमसे पहले के संस्मरण भी हैं, लेख भी हैं, तो उसको आलोचना कहिए आप, उसको एक चाहिए कहिए कि एक जानने की इच्छा थी, परखने की, लिख करके
1: जी,
0: को होती है आपकी इच्छा, जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी। अब हम लोग बचपन में, बचपन तो नहीं, किशोरावस्था में, युवावस्था में उनकी एक रचना पढ़ हमको याद भी हो गई थी काफ़ी हद तक, अब कुछ पंक्तियाँ याद हैं, माँ जी ने बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता कि मेरा तन डोलता, ऐसे ही है, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, तो उन पर लिखा एक लेख
1: जी,
0: अब उसमें एक आनंद आने लगता है। जैसे फिर उस किताब में या उस किताब के लेखों में मैंने ये क्यों जांचना चाहा कि ये किस तरह का संबंध कविता का अपने समाज से होता है।
1: आपके अनुवादक पक्ष से अगर हम कुछ सवाल करना चाहें आपसे, क्या अनुवादक होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि कई भाषाओं की जानकारी आपको हो?
0: कई भाषाओं की चाहे न भी हो, एक ही भाषा की हो तो भी काफ़ी है
1: जी।
0: अब मुझे तो जिन दो दो भाषाओं से अनुवाद किए हैं, बांग्ला से और अंग्रेजी से
1: जी,
0: तो बांग्ला का प्रसंग तो ये है कि कलकत्ता में बड़ा हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बांग्ला भाषी छात्र ही अधिक थे, तो एक सहज ही उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा था मुझे
1: जी।
0: पढ़ने के लिए तो करना पड़ा, थोड़ा बहुत उसमें प्रयत्न भी किया कि मैं ठीक से पढ़ सकूँ, संभव हो तो लिख भी सकूँ, बांग्ला लिपि में कुछ लिख सकूँ, लेकिन फिर किताबें पढ़ना, उस भाषा में उतरता चला गया, तो जिसका एक बहुत बड़ा लाभ मुझे हुआ, और बंकिम बाबू के निबंधों का अनुवाद किया, गीतांजलि का अनुवाद किया
1: जी, वो तो बहुत बड़ा काम आपका हुआ।
0: जीवनानंद दास की कविताओं का अनुवाद किया, शंकु घोष की कविताओं का अनुवाद किया, और जो कि भोपाल में बैठा हूँ इसलिए सहज ही देखिए ये बात याद आ रही है कि वो भारत भवन आए थे शंकु घोष जी भारत भवन के निमंत्रण पर, और 15 कविताओं का अनुवाद तो यहीं बैठ कर किया था उनके साथ, और उनके उनसे मिलना यहाँ प्रसंग आ गया है उनका, तो कहना चाहता हूँ कि उनसे मिलना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी, क्योंकि कभी भी ऐसे थे, व्यक्ति भी ऐसे थे, उनका अध्ययन भी ऐसा था जिसमें होता है ना कि किसी की प्रेजेंस ही आपको बताती है, कभी कभी किसी की उपस्थिति ही इतना कुछ आपको देती है, उसका सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, जीवन जीने का ढंग, कि आप उसी से समृद्ध होते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये बात समझ में आई मेरे कि अगर अनुवाद बहुत किए हैं मैंने, करने में बहुत आनंद भी आया, उसका एक बड़ा कारण समझ में आया कि अनुवाद करके ही आप अपनी भाषा को जान सकते हो
1: जी,
0: क्योंकि जब आप लिखते हो कोई भी लेखक तुम्हारे एक ड्राफ्ट बनाएगा, दो ड्राफ्ट बनाएगा, तो ये होता है कि पहले ड्राफ्ट में वो ज़्यादा सोचता नहीं, जो शब्द उसके पास सहज ही होते हैं वो उसी के प्रवाह में वो लिखता है, पर अनुवाद में तो फिर आप ये सोचते हो कि इसमें हम क्या करें, कि राम कमरे में आया, कि राम ने कमरे में प्रवेश किया, संदर्भ क्या
1: है जी,
0: और व्यक्ति वो कौन है, ये तो एक ही उदाहरण हुआ, फिर बड़े ऐसे बीसियों उदाहरण है जहाँ आप डिक्शनरी भी देखते हो, उस संदर्भ पर कई बार सोचते हो, उस संदर्भ के हिसाब से अपनी भाषा के शब्द, पर्यायवाची शब्द भी आप ढूंढते हो
1: जी,
0: कि मैं इस समय क्या करूँ, लिखूँ तो क्या अच्छा रहेगा,
1: और आप समृद्ध होते जाते हो
0: उसी से होते हैं, और उसी से बहुत आनंद भी आता है, क्योंकि अपनी भाषा को जानने का आनंद भी एक बड़ा आनंद है ना।
1: आपकी कविता भी है ना नए शब्द कि जैसे जैसे हम शब्द जानने का प्रयास करते हैं
0: जी।
1: प्रयाग जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अनुवाद को भाषाओं का ही नहीं संस्कृतियों का भी सेतु कहा जाता है, थोड़ा सा इसे हमारे श्रोताओं के लिए व्याख्यायित करें।
0: नहीं, वो तो निश्चय ही है, देखिए हम लोगों ने भी जो जाना अपने जीवन में भारतीय साहित्य के बारे में, विश्व साहित्य के बारे में, वो कैसे जाना, अगर अनुवाद न होते तो हम विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में, उनके खान पान के बारे में सही चीज़ हम जान लेते हैं किताब पढ़कर, कोई फिल्म देखकर, उसमें का अनुवाद तो है ही, और अनुवाद में देखिए अनुवाद के साथ ये बात भी याद आई कि खाली किताबों का अनुवाद ही नहीं, मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो उसमें सबटाइटल्स रहते हैं
1: जी,
0: तो आप कई तरह से भाषाओं के साथ आपका एक रिश्ता बनता है ना?
1: बिल्कुल,
0: और अनुवाद में तो बहुत ज़्यादा बनता है,
1: बिल्कुल
0: ये तो होता ही है।
1: आगे आपसे जानने का प्रयास करेंगे, थोड़े से सवाल करना चाहेंगे नई पीढ़ी को लेकर, कई बार हमें ये देखने को आ रहा है कि नई पीढ़ी थोड़ा है, उसका एक वर्ग है जो वो पठनीयता से दूर हो रहा है, या जो थोड़ा बहुत वो लिख भी रहे हैं वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए, इस संकट को आप कैसे
0: देखिए? मैं इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कि अरे नई पीढ़ी इतना पढ़ नहीं रही, नई पीढ़ी इतनी अवेयर नहीं है, ये नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैं इसके सचमुच ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि फिर आपको ऐसे व्यक्तियों से भेंट होती है
1: जी।
0: इसमें मेरा मानना है, अब तो जिन ऐसे हम संबोधित करते हैं, एक से एक लड़के लड़कियाँ मिलते हैं जो पहले इस तरह के नहीं थे, खूब पढ़ने वाले, अच्छा सोचने वाले, अच्छी बातें करने वाले, कलाओं से गहरा संबंध रखने वाले, अब वो भी आपकी रुचियों के कारण होता है कि आप उनसे कैसा संबंध बनाते हो। मैं तो इस समय खाली युवा लोगों से ही अधिक मिलता हूँ
1: जी, बिल्कुल,
0: अब उसको ढूंढ कर मिलता हूँ, खोज कर मिलता हूँ, और पता चलते ही उनका काम देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ ये मानना बहुत सुंदर बात है, कि मेरा ज़माना था वो तो था, कल्पना का ज़माना था, दिनमान का ज़माना था, 60s का ज़माना था, 70s का, जब पूरे देश में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये भी तो मेरा ज़माना है,
1: बिल्कुल,
0: कि मैं युवा लोगों से मिल रहा हूँ और उन्हीं से आजकल अधिक मिल रहा हूँ, तो मेरा ज़माना तो है, अभी मैंने सुदीप सोनी और उस दिन मिले बहुत सारे युवा लोगों का जिक्र किया, अपने निजी अनुभव से जानता हूँ, इस समय एक से एक ब्राइट ब्राइट लड़के लड़कियाँ हैं
1: जी,
0: अब मुझे बड़ी खुशी होती है उस बात की, उनको जानता हूँ पर

0: मन है मेरे लगभग हर विधा के लोगों से, युवा पीढ़ी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। और अब वो खाली एक शहर में नहीं है कि भोपाल है दिल्ली,
1: हर एक शहर में जी,
0: हर शहर में है। और मैंने अभी तो ऐसा मौका नहीं है, मैं नाम गिनाता भी हूँ ताकि जो लोग नहीं मन के बारे में जानते अगर तो जाने, अपनी बातचीत उनको लाता हूँ।
1: एक समस्या लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलती है कि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद का शिकार हो जाती है, तो इसकी चिंता को आप कैसे देखते हैं और उसका समाधान आप क्या सुझाना चाहेंगे?
0: देखिए, समाधान तो व्यक्ति खुद सुझा उसका करता है, आपके कहने से नहीं होता। ऐसे मेरा मानना है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बहुत लोगों को आप पाओगे कि वो इस गहराई से जुड़ते हैं किसी कला माध्यम से कि पूरी आजीवन नहीं छूटती उनसे। बहुत लोगों का संबंध टूट जाता है, थोड़ा हो जाता है, फिर लोग याद भी करते हैं, अरे हम अपने ज़माने में कॉलेज स्कूल में नाटक खेला करते थे, अब वो दिन नहीं रहे, ये भी होता है। और कुछ लोग हंसो लंबा उनके साथ का संबंध रहता है। इन चीज़ों को लेकर सच पूछे तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि समाज में ऐसे लोग मौजूद रहें वही काफ़ी होता है, संख्या से भी नहीं होता। मान लीजिए बहुत सारे लोग, जो लोग गहराई से जुड़ते हैं वो निश्चय ही अपने साथ 10 लोगों को प्रभावित करते हैं
1: जी,
0: संभव ही नहीं कि ना करें।
1: बिल्कुल।
0: अब हम भी लोग जो मिला था अपनी पीढ़ी से, किन लोगों से मिला था, जो भाषा का मान लीजिए कोई अलग व्यवहार जो करते थे, जिनके नाटकों में हमने कुछ नया होते देखा। अब हमारे बाबा कारण जी थे, हमारी पीढ़ी के जो लोग उनकी याद करता हूँ, तो ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ हर साहित्य की दुनिया के भी, अपनी से पहले भी की पीढ़ी की, और उन्हीं से मिला उसकी बात आज भी करता हूँ। असल उन चीज़ों में जाते ही हम उलझ से जाते हैं एवरेज निकालने में, और मैं मानने लगा वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार इससे घटना याद आ गई, सुना देता हूँ, बड़ी सुंदर है वो। तो हमारे मित्र देवेंद्रराज अंकुर, जो आप जानते हो कि कहानी का रंगमंच वाले,
1: बिल्कुल,
0: और एक बड़े रंगकर्मी, तो एक दिन किसी पत्रकार ने उनसे कहीं पर पूछा कि आपको नहीं लगता कि नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं? तो उन्होंने छूटते ही कहा कि ये सवाल आप कहाँ के लिए कर रहे हो, मतलब मराठी के लिए कर रहे हो, बम्बई के लिए कर रहे हो, कि कलकत्ता के लिए कर रहे हो? तो कितनी सुंदर बात है उन्होंने कही कि आप एवरेज निकाल कर फिर आप फंस जाते हो, आपके मुझसे यार ये आप कहाँ देखने वाले हैं, आपके क्षेत्र में नहीं, इसका मतलब तो नहीं कि नहीं है। तो दुनिया हम लोगों की सचमुच इस कारण ही बड़ी हुई कि हमने उसको माना ही नहीं, चारों तरफ निगाहें रहीं, और फिर मौके भी ऐसे मिले। अब रंग प्रसंग निकाला तो मैंने देश भर की यात्रा की थी, और बजाज भाई से कहा था कि मुझे भेजिए अलग अलग शहरों में, तभी तो मैं जानूंगा तो वहाँ के कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। अभी तो उनको मैं नाम से जानता हूँ, तभी तो मेरी भेंट हुई, तभी तो मैं गया इम्फाल, गया रतन थियाम जी से, जो अंत में फिर दोस्ती में बदल गई, और हमारे वामन केंद्र जी, महाराष्ट्र के कावलम लाल पड़कर केरल के, ये कैसे हुआ? ये इसलिए होता है कि आप ये नहीं सब मानते कि अरे लोग कम है, नई पीढ़ी ऐसी है, पुरानी पीढ़ी ऐसी है, आप देखो
1: कुल मिलाकर इसमें ना उलझे।
0: हाँ, मैं इस पर बिल्कुल मत उलझिए, आप देखिए, आप खुद पूछिए। पत्रकार तो आजकल पत्रकारों से खास तौर पर कहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों करते रहते हो, और हम लोगों ने हमारे ज़माने में चूंकि हमने ऐसा नहीं किया तो हमको बहुत लाभ मिला। हम सोचते थे, हम जोड़ते थे इससे उससे, अपने आप ही जुड़ते थे लोग। अच्छा अच्छा असम के कवि कौन है? मैं मान लीजिए गुवाहाटी जाता था, 7 बार गया हूँ, तो मैं क्या करता था? अच्छा वहाँ नीलम कुमार है, वहाँ तुलसी है, वहाँ ये है, फिर उनसे मिलता भी था। दुनिया मेरी बड़ी हुई ना, काफ़ी बड़ी हुई।
1: बिल्कुल।
0: मैं पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के लेखकों के नाम गिना सकता हूँ, विभिन्न पीढ़ियों के। वो कैसे हुआ? वो फिर आपकी इच्छा से होता है। अब इच्छा ही ना हो, आप मानकर बैठ जाओ कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा।
1: प्रयाग जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा कि आपको जो सानिध्य मिला है, बड़े बड़े शिखर पुरुषों का मिला है, चाहे अज्ञेय जी हों, नागर जी हों, और निराला जी जैसे लोग हों, तो इनके
0: निराला से भी एक बार तो भेंट है।
1: जी जी जी, आपने जिक्र किया था एक बार, तो इनके सानिध्य से कोई एक ऐसी अनूठी बात जो आपको जानने को मिली हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें।
0: नहीं, देखिए बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं, और आप जानते हो स्वामीनाथन जी के साथ तो मेरा संबंध कितना गहरा था।
1: बिल्कुल।
0: उनकी जीवनी लिखी है स्वामीनाथन, एक जीवनी, और अभी एक बड़ी किताब बनाई है धूमिल गैलरी के सहयोग से,

0: द एरा ऑफ जगदीश स्वामीनाथन
1: जी,
0: वो अंग्रेजी में है और बड़ी किताब है, मतलब वो तो सचमुच वजन के हिसाब से भी बड़ी है। उस किताब का वजन ही है 3 किलो 900 ग्राम।
1: स्वामी बहुत सामग्री है उसमें,
0: सामग्री तो है ही उसमें। स्वामी के साथ जो मेरा समय बीता, क्या क्या नहीं मिला, अभी एक का साझा कर लेता हूँ।
1: जी बिल्कुल।
0: तो स्वामी से मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था, हम उनको स्वामी कहते थे। तो मैंने उनसे एक सवाल ये किया था कि कला और प्रकृति का संबंध आप क्या मानते हो, बहुत गहरा सवाल है। उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, उसने मुझे कला को परखने और उसके महत्व को समझने में बहुत मदद पहुंचाई।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा कि एक रूपक गढ़ा उन्होंने कि प्रकृति कला के आईने के सामने वाली ये खड़ी है, मतलब वो स्त्री है और उसमें उसके सामने कौन है, उसके सामने कलाकृतियां हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। कितनी गहरी बात उन्होंने कही, कितनी सरल तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बन रहा है चित्र में, मूर्ति शिल्प में, वो प्रकृति से प्रेरित होते हुए भी ठीक वैसा नहीं है।
1: वैसा नहीं है, बिल्कुल।
0: तो उसकी मौलिकता, उसका महत्व, कि अगर ये सृष्टि किसी की रचना है तो फिर जो कलाकार की रचना है उससे भिन्न है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा सवाल उनसे किया था इतना ही गहरा कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हो, उसका भी इतना सुंदर जवाब उन्होंने दिया था। संबोधन शब्द पर जवाब टिका है, उन्होंने कहा मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ, पर पेड़ पहाड़ चिड़िया मेरा काम देखने नहीं आएंगे, आएगा मनुष्य ही।
1: क्या बात।
0: अब मनुष्य, अब देखिए फिर उन्होंने ये उसने जोड़ा कि मैं मनुष्य को संबोधित हूँ, वही देखने, न केवल देखने नहीं आएगा, मैं संबोधित भी उसी को हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि और कौन देखेगा। तो मनुष्य और एक जानी हुई बात को की जो गहराई हो सकती है, उससे उन्होंने मेरा परिचय करा दिया।
1: जी कह बिल्कुल, बिल्कुल। ये जानना है आपसे कि हमारे युवाओं के लिए, अभी हमने बहुत बातें की अपने युवाओं पे, और कई युवा जो हैं ये जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपका अनुभव रहा है जीवन का, कला का, संस्कृति का, तो जैसे युवा अपनी भाषा में पूछते हैं कि व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: लाइफ इज विथ ऑल दिस, विथ आर्ट्स, क्योंकि देखिए ये तो जिया भी है, जाना भी है और समझा भी है। दुनिया कितनी, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा, मतलब मनुष्य उसमें रहने वाले, वो क्या करते हैं, जागते हैं सुबह, नाश्ता करते हैं और अपने काम पर जाते हैं, फिर खाते पीते हैं
1: जी,
0: कुछ पहनते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। इसके आगे क्या है? अगर इस दुराव से बचना है, और दुराव का तो कोई आनंद होता नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत सीधी सरल बात है कि फिर वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिलेगा केवल कलाओं से।
1: जी।
0: और इसकी बड़ी अच्छी समझ तो लोक में भी रही है, नहीं तो लोक कलाएं कैसे बनी? एक फिल्म को छोड़कर हर विधा की एक परंपरा है लोक में, और आधुनिक काल में जो बनी वो तो बनी ही, वो तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है।
1: जी।
0: मतलब भीम बैठका के गुफा चित्रों से शुरू हो जाती है।
1: जी।
0: तो ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है, वो बात समझ में आ गई, गहराई से मन में बैठ गई, वैसा जीवन जिया, वैसा जी रहा हूँ, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए क्या हो सकता है।
1: कार्यक्रम के अंत में कोई एक रचना जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
0: प्रतिनिधि तो नहीं, पर जो छोटी सी है क्योंकि, और जो याद भी रहती है वो आपको सुना देता हूँ।
1: जी।
0: तुम घटाना मत अपना प्रेम, तब भी नहीं जब लोग करने लगे उसका हिसाब, ठगे हुए पाओ अपने को अकेला एक दिन, तब भी नहीं मत घटाना अपना प्रेम, नहीं तो बंद कर देगी बोलना तुमसे चिड़िया, या मुंह फेर लेगा आसमान, नहीं तुम घटाना मत अपना प्रेम।
1: क्या बात,
0: धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता से आपने इस बातचीत का समापन किया, और आज के परिदृश्य में ये कविता बहुत ज़्यादा प्रासंगिक मालूम होती है। प्रयाग शुक्ल जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की, एक तरीके से मार्गदर्शन हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है। तो आपका बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर, आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं पंचतंत्र का भाग 13।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र का पांचवां प्रकरण अपरीक्षित कारक सुनना प्रारंभ किया, जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर, सुनो।
2: कहो मित्र।

0: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
1: अच्छा।
0: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्य कुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद

0: गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
1: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।
2: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
3: अवश्य अवश्य अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए? यहां तो दो रास्ते हैं।
3: वो देखो मित्र, किसी वणिक की शव यात्रा जा रही है।
4: ये देखो,
3: क्या
4: ग्रंथ में लिखा है, महाजन जिस मार्ग से जाए अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए।
3: अच्छा,
0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा। तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,
5: मित्रों तनिक ध्यान दें।
3: हाँ।
5: इसमें लिखा है, उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
3: मित्रों, अर्थात ये गर्दभ हमारा स्वजन है, तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ मित्रों, गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
2: भद्रगण, हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है, जरा देखो तो।
4: मित्र, ये तो ऊंट है।
3: अच्छा,
4: ये तो अत्यंत तेज गति से चलता है।
3: मित्रों, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
4: अच्छा,
3: अब देखो इसमें लिखा है, धर्म की गति तीव्र होती है। हो ना हो, ये अवश्य ही धर्म है।
4: धर्म है।
5: क्या ये धर्म है?
3: हाँ।
5: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
2: बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों, इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
3: चलो मित्रों,
2: चलो चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
2: थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर ले।

0: विश्राम करते हैं।
1: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर रहे हैं।
0: चलो
2: परंतु मित्र ठहरो, इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। हाँ। कहीं कुछ हो गया तो
3: भी ठीक है, बिना जाने स्नान करना ठीक नहीं है।
1: हाँ। परंतु मित्र आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए एक पलाश का पत्र बह रहा है, डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
3: अच्छा।
1: हाँ अब मैं तो चला स्नान करने। बचाओ, बचाओ।
3: अरे अरे मित्र ये तो डूब रहा है।
1: अरे
3: अरे वो पलाश का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
1: अरे
3: ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
3: कोई तो बचाओ उसे।
2: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ तो प्रयास करो भाई। अरे अरे ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
4: चिंता
2: क्या करूं?
4: ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
3: पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो।
4: इसमें लिखा है सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर्जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
3: अच्छा।
4: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
2: ऐसा लिखा है?
4: हाँ हाँ यही लिखा है।
2: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का मोह छोड़ देता हूँ।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्ति कारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए, लोगों के उपहास के पात्र भी बने। हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है। हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध,
0: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है। अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता, तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, जिससे मैं घर जा सकूं।
1: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है, और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
0: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो। यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के

0: रहने योग्य नहीं है और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं बाबा, मैं तो चलता हूं, मैं तो चलता
1: हूं। नहीं नहीं, मैं सरसिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ सरसिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ सरसिद्ध।

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमर शक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

0: हे कुल देवता, मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु। मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्यों नहीं?
1: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
2: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
3: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाए।
4: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
5: प्रणाम पिताश्री।
3: आयुष्मान भवा। स्वागत है आचार्यवर, आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।
4: नहीं महाराज, चिंता चिता समान होती है। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर खाया जाता है, और अब आपके ये तीनों पुत्र आपकी सारी चिंताएं ले लेंगे।
3: महामंत्री सुमति, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं।
5: नहीं पिता महाराज, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं। राजा को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पूरे तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है। चाहे तो आप हम तीनों की परीक्षा ले लें।
3: पुत्र, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे? ये आपके खाने खेलने के दिन है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
6: खाने खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है महाराज। हम तीनों भाई चाहते हैं आप किसी भी प्रकार से अपने को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देंगे।
1: पुत्र बहुशक्ति, आप सब में बड़े हैं, आप हमें बताएं एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं।
6: सर्वप्रथम महामंत्री सुमति को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, एक सच्चा मित्र कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, हर सुख दुख में आपके साथ होता है, आपको सही राह दिखाता है।
3: अद्भुत, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
7: महाराज, अधिक प्रसन्नता दर्शाना भी राजा के लिए उचित नहीं है। ये वो पल होते हैं जिनकी प्रतीक्षा शत्रुगण करते हैं। राजा को सर्वदा अपने क्रोध और प्रसन्नता के साथ दुख को भी सीमित रूप से ही दर्शाना चाहिए। मेरे अधिक बोलने के अपराध को क्षमा करें पिता महाराज।
3: नहीं नहीं पुत्र, आप सबकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत घोल दिया हो।
5: पिताश्री, गुरुदेव बहुत दूर से पैदल आए हैं, वह थक गए होंगे, उनके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं यह कार्य करूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवता का रूप होते हैं। अपने भोजन से आधा भाग अतिथि को देना पुण्य होता है। उनके पैर धोने से कन्या के लिए योग्य वर मिलता है। अतिथि नारायण का रूप है।
3: आपका कथन सर्वथा उचित है वत्स। हे आचार्यवर, मैं किस प्रकार आपका सम्मान करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। परंतु मैं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं कि आपको 100 गांवों का आधिपत्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं गुरुदेव?
4: नहीं महाराज, नहीं। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं कि मुझे धन भूमि इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के संध्या काल में अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। महाराज, आपके पुत्रों का जो दायित्व मैंने लिया था मैंने पूर्ण किया। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे देने वाले धन से अपने राज्य में एक शिक्षा संस्थान बनवाएं, जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान दे सके। आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
3: आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है महामंत्री सुमति। आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू करवा दें और पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि आज मेरे पुत्रों के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

हमारी ये पंचतंत्र की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। आप सबका साथ बड़ा आनंददायी रहा, आशा है आप सबने भी आनंद लिया होगा। हमारी ओर से आप सबको सादर नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र का 13वां भाग। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र किया है। क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। ये योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। और IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता आप सभी साथियों का कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस तपती गर्मी में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और खूब ठंडे पेय पदार्थों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यटन स्थल की सफाई और युवा दायित्व पर। इसी के साथ चर्चा होगी फिटनेस के महत्व पर। पर दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से किस्से से करते हैं। पिछले वीकेंड की ही बात है, कॉलेज के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच उस मशहूर झरने पर जाएंगे। हफ्तों की प्लानिंग हुई, ट्रिप की प्लेलिस्ट बनी और ढेरों शानदार तस्वीरों के आइडियाज सोचे गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था। हरी भरी वादियाँ और गिरते पानी की आवाज़। दोस्तों ने उत्साह में अपना कैमरा सेट किया, एक बेहतरीन फ्रेम बनाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जब अपना वो वीडियो प्ले करके देखा तो जानते हैं बैकग्राउंड में क्या नज़र आया? पानी की साफ लहरों के बीच तैरता हुआ एक चिप्स का खाली पैकेट और ठीक उनके पीछे पत्थरों पर फंसी हुई प्लास्टिक की कुछ खाली बोतलें। उस एक पल में उस खूबसूरत जगह का सारा सुकून और उन दोस्तों का सारा उत्साह एकदम फीका पड़ गया। साथियों, यह सिर्फ उन दोस्तों की कहानी नहीं है, यह आज हम में से लगभग हर उस युवा की कहानी है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुरा कर प्रकृति के बीच सुकून ढूंढने जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या मिलता है? हमारा ही छोड़ा हुआ कचरा। चलिए इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त है आज के इस कार्यक्रम के पहले गीत का।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से। स्वर थे मोहित चौहान के, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन था प्रीतम का। दोस्तों गीत से ठीक पहले हमने एक किस्से को साझा किया था, एक खूबसूरत झरने और वहाँ फैले हुए कचरे की दास्तां। दोस्तों हमारी ज़िंदगी असाइनमेंट्स, ऑफिस की डेडलाइंस, करियर की टेंशन्स और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में कितनी व्यस्त हो गई है। इस भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। ऐसे में जब हम अपना बैग पैक करते हैं और किसी सफ़र पर निकलते हैं तो वो सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, वो हमारे मन का रीसेट बटन होता है। हम पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वो ठंडी हवा हमारे दिमाग की उलझनों को शांत कर सके। हम नदियों और झीलों के किनारे बैठते हैं, चाहे वो हमारी शहर की शांत झीलें हों, हरी भरी वादियाँ हों, सुकून भरा परिसर हो। वहाँ जाकर जो शांति मिलती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और जब हम पुराने किलों और ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं तो वो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होती, वो हमारी जड़ें हैं। वो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है। दोस्तों पर्यटन सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह हमारे लिए एक थेरेपी है, यह हमें प्रकृति से, अपनी संस्कृति से और सबसे बड़ी बात खुद से जोड़ती है। जब आप एक नई जगह पर अजनबी लोगों से मिलते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ की हवा में सांस लेते हैं तो आप एक बेहतर और सुलझे हुए इंसान बनकर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसी खूबसूरत सफ़र के दौरान कई बार हम सब से अनजाने में ही सही एक छोटी सी चूक हो जाती है। हम दोस्तों के साथ होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और उसी उत्साह में कई बार हमारे हाथ से कोई खाली पैकेट या पानी की बोतल वहीं छूट जाती है। हम इसे कोई भी कभी भी जानबूझकर अपनी प्रकृति या अपनी धरोहर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। हम सब अपनी इन जगहों से बहुत प्यार करते हैं, बस उस खुशी के पल में हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वो छोटी सी चीज़ वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। ज़रा सोचिए, वो वादियाँ, जो नदियाँ, जो ऐतिहासिक दीवारें बिना कुछ मांगे हमें इतना सुकून देती हैं, क्या वो बदले में हमसे थोड़ी सी देखभाल की उम्मीद नहीं करती? जब उसी खूबसूरत नज़ारे के बीच हमें कोई प्लास्टिक या कचरा नज़र आता है तो हम सबका मन थोड़ा उदास हो जाता है ना, क्योंकि वो जगह हमारी अपनी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा क्योंकि गीत के बाद हम जानेंगे कि कैसे हम युवा पर्यटन स्थल को साफ रखने में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में गीत जग घूमया फिल्म सुल्तान से। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। दोस्तों हम युवा बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो दुनिया का कोई भी बदलाव ला सकती है। हम जो चीज़ अपना लेते हैं वो ट्रेंड बन जाती है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक नया और बेहद खूबसूरत ट्रेंड शुरू करें, जिम्मेदार पर्यटन यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ट्रेंड। और इसके लिए हमें बहुत कुछ अलग या मुश्किल नहीं करना है, बस सफ़र के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाना है साथ मिलकर। पहला कदम एक छोटा सा इको फ्रेंडली बैग। दोस्तों हम जब भी सफ़र पर निकलें तो अपने बैग में कपड़े या कागज़ का एक खाली बैग ज़रूर रखें। रास्ते में जो भी खाली रैपर या बोतल हो उसे हम वहाँ ना छोड़कर उस बैग में रख लें और डस्टबिन दिखने पर उसे वहाँ डाल दें। कितना आसान है ना। दूसरा कदम लीव नो ट्रेस। यह प्रकृति का बहुत ही प्यारा नियम है। हम जहाँ भी जाएं वहाँ सिर्फ अपने पैरों के निशान और अपनी यादें, अच्छी प्यारी यादें छोड़कर आएं। हम सब ये कोशिश करें कि वो जगह हमारे आने से पहले जितनी खूबसूरत थी हमारे जाने के बाद भी वैसी ही रहे। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सहयोग। दोस्तों कई बार हमारे आसपास कोई और पर्यटक अनजाने में कचरा छोड़ रहा होता है, ऐसे में एक सहयोगी के रूप में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनसे कहना है कि आइए इसे हम सब मिलकर साफ रखते हैं, आखिर ये जगह हमारी ही तो है। यकीन मानिए प्यार और अपनेपन से की गई यह छोटी सी पहल सामने वाले का दिल जीत लेगी। दोस्तों हमारी धरोहरें और हमारी प्रकृति हमारा परिवार है, आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि अपने इस परिवार की खूबसूरती को हम यूं ही सहेज कर रखेंगे, एक टीम की तरह, एक जिम्मेदार युवा की तरह। अभी तक हमने बात की हमारे आसपास के वातावरण, हमारी खूबसूरत धरोहर और प्रकृति को सहेजने की। हमने जाना कि कैसे हम सब मिलकर बाहर की दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन साथियों इन खूबसूरत वादियों का मज़ा हम तभी ले पाएंगे जब हमारा अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम सब की ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम विषय की, हमारी सेहत, हमारी फिटनेस की। ज़रा सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं? क्या आप दो मंजिल सीढ़ियों बिना सांस फूले चढ़ सकते हैं? क्या दिन भर काम या पढ़ाई करने के बाद भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा बचती है कि आप शाम को अपने परिवार या दोस्तों के साथ हंस बोल सकें? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप फिट हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से स्क्रीन टाइम भी इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही लगातार बैठे रहने और शारीरिक मेहनत कम होने का सीधा असर हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा है। दोस्तों आज का युवा बहुत जल्दी तनाव, एंजाइटी और थकान का शिकार हो रहा है। हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कई बार उन सपनों के लिए मेहनत करते करते अपने शरीर और अपने दिमाग को थका देते हैं। यहीं पर फिटनेस हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत फिल्म संजू से। गीतकार थे शेखर अस्तित्व और संगीत निर्देशन था विक्रम का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग का कितना गहरा कनेक्शन है? जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, चाहे वो टहलना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना हो,

तो हमारा दिमाग एंडोमॉर्फिन्स नाम की रसायन छोड़ता है और हम इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अगर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है या दिन भर के काम से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आप बस 30 मिनट के लिए बाहर खुली हवा में तेज़ी से चलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सारा तनाव जैसे पसीने के साथ बह गया हो। आपका दिमाग पहले से कई ज़्यादा शांत और स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि फिटनेस सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों को ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी एक बहुत बड़ा सहारा देता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक शांत और एकाग्र मन बसता है। जब शरीर में चुस्ती होती है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि समय कहाँ से निकालें। हम सब इतने व्यस्त हैं कि लगता है फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना तो असंभव है। साथियों, यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। फिटनेस को एक टास्क या बोझ की तरह मत देखें, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लीजिए। हमें रोज़ 2 घंटे जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी कहता है कि दिन भर में बस 30 से 40 मिनट की सामान्य शारीरिक गतिविधि हमें स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। तो हम अपनी सामान्य दिनचर्या में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं, आइए बहुत ही आसान और व्यवहारिक तरीकों पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी मौका मिले लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियो व्यायाम है जिसके लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने की बजाय टहलते हुए बात करिए। पढ़ाई या काम के बीच में हर 1 घंटे के बाद उठें, शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और पानी पीकर वापस बैठें। आप अपने पसंदीदा खेल को भी चुन सकते हैं, क्योंकि फिटनेस मज़ेदार होनी चाहिए, सज़ा नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल खेल सकते हैं। और अगर आपको स्विमिंग पसंद है या साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो उसे भी अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति के बीच 30 मिनट टहलकर ज़रूर आइए, यह आपके शरीर को ही नहीं आपके मन को भी प्रफुल्लित करेगा। अंत में हम फिटनेस के उन 2 पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों, जिनके बिना कोई भी फिटनेस रूटीन अधूरा है, हमारा आहार और हमारी नींद। आजकल जंक फूड और बाहर का खाना हमारी लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा बन गया है ना। हम इसे पूरी तरह से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम एक संतुलन तो बना ही सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपके दिन का ज़्यादातर खाना घर का बना हुआ हो, सादा और पौष्टिक हो। ताज़े फल, सब्जियां, दालें और भरपूर मात्रा में पानी, बस यही असली फिटनेस का राज है। पानी हमारे शरीर के लिए एक जादुई तत्व है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए, आप खुद अपने शरीर और त्वचा में गजब का बदलाव देखेंगे। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, पर्याप्त नींद। हम युवा अक्सर देर रात तक फ़ोन चलाते हैं या काम करते हैं और अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लें और कितना भी व्यायाम कर लें, आपका शरीर हमेशा थका हुआ ही रहेगा। रात को सोने से कम आधे घंटे पहले अपनी स्क्रीन का प्रयोग रोक दें। दोस्तों, हम युवा इस देश का भविष्य है, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत ऊँचाइयों को छूना है और यह तभी संभव है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजुएल द्वारा ग्रुप बी और सी के 12,256 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन 21 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून है। हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विदा लेती हूँ आपके रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
7: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
7: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
7: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
7: सफर में
6: आपके साथ
7: आकाशवाणी।
9: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कलंक फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा। श्रेया घोषाल और वैशाली की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान की, दर्शन रॉयल और पलक मुछाल की। संगीत से सजाया है मीश रेशमिया ने और बोल हैं इरशाद कामिल के।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल शेखर के संगीत से सजा हुआ गीत बोल हैं इरशाद कामिल की। आवाज़ें नूरानी सिस्टर्स और विशाल ददलानी की हैं और फिल्म का नाम है सुल्तान। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शिवाय फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हमारी बहनों को 40 से ज्यादा ई साइकिलें वितरित की गई हैं। ये साइकिल इन बहनों के जीवन में बहुत मदद करेंगी, खासकर ई साइकिल जब आज पेट्रोल और डीजल की कठिनाई का दौर है तब ई साइकिल का अपना ही महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की पहलों का जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1,87,000 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपलब्धि लाखों ग्रामीण कारीगरों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। यह योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के

0: साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
0: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
0: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
0: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: Children, have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की
6: जय।
5: वीर जोरावर की
6: जय।
5: जय जेरापुर, जय भारत।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
7: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
8: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं। लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
9: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
8: जी।
9: वहां के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
8: जी महाराज। महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
9: बिल्कुल।
8: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
9: जी मंत्री जी।
8: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
5: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
10: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
3: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
9: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
3: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
9: देखिए निजाम साहब।
3: जी फरमाइए।
9: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
3: जी।
9: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
3: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
9: जी।
3: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
11: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहां के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
7: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
11: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
12: बिल्कुल।
11: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
12: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
11: लेकिन जरा होशियारी से।
12: जो हुकुम सरकार।

0: Put
1: Mommy.
0: Out! तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: हाँ. छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
2: हुजूर.
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
0: जाओ, चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे, चलो, हाथ हटाओ. छोड़ो मुझे.
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े. और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े.
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था, उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी, और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
1: ये नामुमकिन है.
6: वाय?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे. अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.
6: तो नहीं मानोगे. देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें. ये सजा.
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा. हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए. हमने जो किया हमें उस पर गर्व है. कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है. इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा. हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं.
6: एक्चुअली यू आर अ फूल.
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा. बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई.
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा. भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी.
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे.
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली.
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं. भारत माँ का बहादुर बेटा हूं. इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा. फिर मैं तो राजा हूं.
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म का नाम शिकारी, आवाज लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, बोल फारूक कैसर की और संगीत GS कोहली का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब का ये प्यारा सा गीत। शकील बदायूनी का लिखा एक गीत था और धुन बनाई थी नौशाद ने।

आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है कारवा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले जिस गीत को हम सुनवाने जा रहे थे और नहीं सुनवा पाए, उसी गीत को हम फिर से लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है शिकारी। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ है। फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत है और जी एस कोहली ने इसे संगीत से सजाया है। आइए सुने इस गीत को।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविय ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविय ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। IPL क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता। विषय रहेगा किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग। जानकारी देंगे डॉक्टर अनुराग पटेल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में फिल्म संगीत का आनंद दीजिएगा 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसमें आप सुनेंगे कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिल-ए-समा। रात्रि 10:00 हम प्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति क्षेत्रीय समाचार एकांश की होगी। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेगा पंडित उमाकांत गुंदेचा, पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन, राग होगा यमन। 12:00 है हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:00 पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा 8:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रागेश्वरी सोनी के गाए चंद गीत और भजन। समय रहेगा 9:15। 9:30 पर सुनेगा प्रदेश की सुर्खियों में कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन, राग होगा देवगिरी बिलावल। समय 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें की सुने। दिन में 12:00 और 2:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात्रि 8:15 पर। 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। उपेक्षित घनश्याम सिंह तोमर का लिखा यह नाटक आप सुनेगा कल रात्रि 10:00। प्रस्तुत करता होंगे जितेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग रागीश्री। समय रहेगा रात्रि 10:30। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
2: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2,00,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्यम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
1: ये परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और SP निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4,00,000 रुपए दिए जाएंगे। सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में BSF की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर 4-स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
4: BSF के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने,

0: वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया।
1: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और QR कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से 2.5 घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जाँच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में NGT के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जाँच होगी। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए MP लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि AI की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफ़ेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में हैं। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जाँच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI का एक्शन। पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

राम सभा सुनवे बारे हमारे सभी भैयन खो और सभी बहनन खो, आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी ने भरी राम राम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जने खूब नौने हुओ। और देखो कहा है कि कल से नौतपा शुरू हो गए हैं, माने अब तो जो कही जा सकत है कि गर्मी अपने चरम पे पहुंच गई है। सो हम तो जो ही कहबो चाहत हैं कि दिन भर पर्याप्त पानी पीवें, शरीर को ठंडो रखवें, दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। भैया बहनों देखो, कहते हैं ना कि हर मौसम कछु विशेष होता है, और अपनी धरती मैया के लाने, अपनी फसलों के लाने हर समय कछु न कछु विशेष काम अपन को करने आउत है। लेकिन का बताएं, इस समय तो अपन देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो भैया, मौसम को देखत भए अपन को जो है कपड़ा लत्ता पहनने हैं, अपनो खान पान रखने हैं और खूब ही अच्छो पानी पीने हैं, जिससे अपन जलू लपट से बच सकें और स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ ध्यान रखने हैं कि अपन को कोनो भी काम काज के लाने अगर बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें, जैसे कि अपन घर से खाली पेट कभी भी ना निकलें, अच्छी तरीके से खा पी के निकलें। और जब अपने संगे जावें तो अपने संगे एक पानी की बोतल ले जावें और सूती फुल आस्तीन के कपड़ा पहने, गमछा से या सूती कपड़ा से मुंह नाक आँख को अच्छी तरीके से बांध ले में। और अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है तो अपन जो है आँखों को भी बचाने के लिए चश्मा लगा लें, जिससे धूप से बचाव हो सके। और भैया अपन तो यही कहें कि जहाँ तक हो सके तो अपने कामकाज जो है ना सुबह के समय या शाम के समय ही पूरे करें। और ई मौसम में अपन देखा था ना कि घर की बनी छात जो है, आम को पना है, पुदीना और सौंफ को शरबत है, ऐसी जो पेय पदार्थ हैं जो कि अपने शरीर में पानी की जो कमी हो जाऊत है उसकी पूर्ति करत हैं, उनको भी सेवन करें। और बहुत से फल भी हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी होते हैं, उनको भी अपन सेवन कर सकते हैं, जिससे अपन के शरीर में पानी की कमी ना होए। वहीं भैया ये बात को ध्यान रखना है कि जा समय अपन देखा था ना कि पानी तना जगह पे अपन को डलो भाव दिखाई जाए, लेकिन धूप के कारण भाई तना देर में देखते हैं कि उड़ जाऊ थे। जीके को मतलब है कि अपन देखें तो आसपास जो हैं जितने भी अपने जल स्रोत हैं वे धीरे धीरे का है उनको जल स्तर नीचे जा जाऊत है। और जब जल स्तर धरती को नीचे चलो जाऊत है तो ऐसी स्थिति में काहूत है कि पानी जो है साफ स्वच्छ जो पानी है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कई बार अपन जब दूषित पानी पी लेते हैं उससे भी कई प्रकार के अपन को बीमारियां हैं, संक्रमण हैं, होने की संभावना रहते हैं। तो अपन जो भी पीने का पानी उपयोग में ला रहे हैं तो एक बार जान ले में कि पानी साफ और स्वच्छ और पीने योग्य होना चाहिए, तभी उसका उपयोग में लाएं। और भैया इस समय अपन देखते हैं कि पानी जो है सभी के लाने जरूरी है, अपन के संगे संगे जो पशु पक्षी हैं उनको भी पीने के अच्छे पानी की ज़रूरत होते हैं। तो अपन चाहे तो अपने आंगन में, बाखर में या फिर घर की मुंडेर के पास कहूँ भी जो है ऐसी व्यवस्था करके चलें कि जहाँ पे पशु पक्षी आके पानी पी सकें, और हो सके तो थोड़ा उनके लाने दाना भी रख दें। जब अपने घर के आसपास ऐसी व्यवस्था हो जाऊत है तो अपन देखो सवेरे सवेरे बहुत सारी चिड़िया हैं, तोता हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, वे दाना लेवे आउत हैं, दाना खाऊत हैं और उनकी चहचहाट सभी को मन मोह लेती है। और ये एक प्रकार की इतनी अच्छी अपन को सुख मिलत है कि अपन ने कोनो उकिला ने कछु अच्छो काम करो, क्योंकि वे तो जो हैं अपनी बात मुंह से बोल के बता नहीं सकत हैं उनको का परेशानी है, कौन सी दिक्कत है। तो अपन उनकी छोटी छोटी बातों को कि जो है दाना पानी रख करके भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने पालतू पशु हैं उनको भी पानी की जो मात्रा है भरपूर उन्हें मिले, इसके लाने जो है हौजा जो है अपने घर के बाहर रख सकत हैं। इसके साथ साथ जो अपने दुधारू पशु अपन पालत हैं उनके लाने भी अपन को साफ सफाई ध्यान रखने हैं और पानी की अच्छी व्यवस्था करके रखने हैं, जिससे वे स्वस्थ और निरोग रहें। तो भैया अपनी बातें तो आगे भी हुई हैं, अब सुनाते हैं लोकगीत। स्वर है फूलचंद अहिरवार व साथी का।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भैया देखो थोड़ी सी जानकारी से जो है अपन जो है विभिन्न प्रकार की ठगी से बच सकते हैं। और आज के समय में सभी को डिजिटल के माध्यम से कई प्रकार के भुगतान सोई करने होते हैं, तो हमेशा सतर्कता बरतें। और इसी के साथ साथ भैया अब अपन देख रहे हैं कि तकनीकी जो है आगे बढ़ती जा रही है, नई नई तकनीक आज अपने सामने आ रही हैं। खेती की बात करें या फिर अपनी घर गृहस्थी की बात करें या कोनो कामकाज की, हर जगह कई तकनीकों के माध्यम से काम सरल भी हुआ है, सहज भी हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अपन देखा थे तकनीकी बढ़त है तो कई ऐसी योजनाएं भी हैं जो कि अपने तक अगर नहीं पहुंच रही तो अपन उनको लाभ भी नहीं ले पा रहे। तो ऐसी ही जो अपने किसान भैया रहे उनको कई प्रकार की समस्याएं आती हैं कि अगर उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है तो वे क्या करते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं हो पाते है। तो अपन भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो शासन के द्वारा कई प्रयास करे जा रहे हैं उनके बारे में हमें पता हो। अब जैसे कि अपन किसान क्रेडिट कार्ड की ही बात कर लें, कई बार क्या होता है कि अपने बहुत से किसान भैयों को बीजों के लाने, अच्छी सिंचाई व्यवस्था करवे के लाने या फिर खाद के लाने या फिर कोनो और काम काज जो कि कृषि से संबंधित होते हैं उनके लिए आर्थिक रूप से सशक्त होने की ज़रूरत पड़त है। और ऐसी स्थिति में अगर उनके पास रुपया पैसा नहीं होते तो वे अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते और जी को सीधो असर पड़त है उनकी खेती पे। तो भैया अपन जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके जो है इस समस्या से निदान पा सकते हैं, जिससे हमें जो सामान्य ब्याज दरें होती उससे भी कम दर पर बैंकों के माध्यम से ऋण मिल जाता है और हम खेती से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याओं से बच जाते हैं। और इसमें अगर हम सही समय पर जब पूरी किस्तें चुका देते हैं तो हमें छूट भी दी जाती है। तो अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि

0: की समस्या है उनको निदान सोई हो जाते हैं। तो आओ भैयारों आप सुनत हैं, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर प्राप्त मौसम की जानकारी एवं कृषि संबंधित सलाह। जानकारी दे रहे हैं BS कंसाना और डॉक्टर हरविंद सिंह। तो आओ भैया बहनों सुनते हैं।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता विजयाराजी सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाई सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BS कंसाना जी आपको खरीफ और जायद की फसलों के बारे में क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो किसान भाई सबसे पहले आप मौसम के बारे में जानिए। पिछले सप्ताह का मौसम आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः साफ से छुटपुट रहे तथा हवा लगभग 5.1 से 5.9 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण और पश्चिम उत्तर दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 44 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। एवं अपेक्षिक आर्द्रता सुबह 32 से 42 और शाम को 18 से 29% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में साफ से छिटपुट बादल रहने तथा वर्षा नहीं होने का अनुमान है। एवं हवा लगभग 8 से 25.1 यानी थंडर स्टॉर्म हल्की फुल्की बारिश की संभावना हो सकती है। साथ ही हवा की बात करें तो मुख्यतः औसत गति से मुख्यतः पश्चिम और पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 42 से लेकर 47.2 और न्यूनतम तापमान 27.9 से 33.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता सुबह 27 से 60 और शाम को 9 से 24% के बीच रहने का अनुमान। जलवायु संभावित मौसम में तापमान वृद्धि और हल्की फुल्की वर्षा को देखते हुए इस समय हरी सब्जी और फसलों में चाहे सुबह अथवा शाम के समय करें। साथ ही किसान भाई जिनको खड़ी फसल की बुआई करनी है तो वो इस समय मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला गए हैं और साथ ही खेतों की दीर्घकालीन गहरी जुताई करें। साथ ही किसान भाई फसलों की बात करें तो मूंग की फसल इस समय खराब मच्छर माऊ जैसे सफेद मक्खी की संभावना हो सकती है। ML दवा प्रति हेक्टर 5 से 6 लीटर पानी घोल बनाकर 10-10 मिनट के अंतराल से 1 या 2 छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई लोबिया की मक्का की ज्वार की बात करें तो इन्हें संभावित मौसम को देखते हुए सिंचाई करते रहें और साथ ही ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार जो है पशुओं को खिलाने के लिए 30-35 दिन की हो गई होगी उसको खिलाने से पहले सिंचाई करें क्योंकि ज्वार में एक्सीजन हो जाता है जिससे पशुओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। उनकी सिंचाई के बाद ही उसको पशुओं को खिलाएं। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें तो भिंडी में इस समय फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 ml पानी में घोल बनाकर 70 दिन के अंतराल से 2 छिड़काव करें। साथ ही किसान मिर्च टमाटर की बात करें तो इस समय मिर्च टमाटर में लीफ कल्याण चूर्ण बदल रोग की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 5 ml 25 WG/100 ग्राम दवा 500 से 600 ml में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई आम आदमी जो हमने नवरोग में फल वृक्ष लगाए थे बरसात में वे यानी लू चलने की संभावना को देखते हुए नव रोपित फल वृक्षों को लू से बचाव हेतु पश्चिम दिशा से टटिया लगाना जिससे पौधों को लू से बचाया जा सके और आवश्यकता अनुसार इनकी सिंचाई करते रहे। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम में तापमान वृद्धि को देखते हुए पशुओं को दिन में छायादार स्थान पर बांधे तथा स्वच्छ ताजा पानी पिलाएं और साथ ही अगर आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार नहलाएं। साथ ही किसान संभावित मौसम में तापमान वृद्धि को देखते हुए दुधारू पशुओं को विटामिन और खनिज लवण मिश्रण की सामान्य मात्रा 40 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के बढ़ाकर 60 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दें। इसी के साथ अब डॉक्टर आपको जानकारी देंगे।
2: नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर बजराज सिंह। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि रस चूसक कीटों को अत्यधिक मात्रा में देखा जाता है ऐसे मौसमी परिस्थिति में, इसलिए रस चूसक कीटों से निदान के लिए हमें उसमें इमिडाक्लोप्रिड अथवा टायमेटाग्राम 750 ग्राम हेक्टेयर के हिसाब से एक स्प्रे करने की आवश्यकता है और जो फसल पक कर तैयार खड़ी है उसको जल्दी करें जिससे बचाव पानी को आपकी फसल आपकी सुरक्षित हो सके और बरसात से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इसी के साथ साथ एक और प्रमुख बात हुई है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और साधारण सा किसान भाई कई किसान भाइयों के खेत उस वक्त खाली भी हैं। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं वो अपना

0: गठबंधन का कार्य अच्छे से कर लें, जिससे बरसात के मौसम में होने वाली वर्षा का अधिकतम उपयोग खेत के अंदर पानी रोका जा सके और पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नीचे परकुलेट करे और जमीन में पानी समाहित हो और मृदा कटाव को भी रोका जाए। साथ ही गर्मी की गहरी जुताई भी आवश्यक है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक गर्मी की गहरी जुताई नहीं की है, वो भी एमबी ब्लाउ से अपने खेत में गर्मी की गहरी जुताई करें, जिससे वर्षा का जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर जा सके और हम वर्षा के अधिकतम जल का उपयोग अपनी फसल उत्पादन में कर सकें। इसी के साथ साथ अभी की स्थिति में हम अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही उत्तम विधि है। हरी खाद के लिए हम सनई या ढेंचा का प्रयोग कर सकते हैं और सनई और ढेंचा की बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो पलेवा करके अथवा सूखे खेत में भी आप सनई या ढेंचा की बीज बुआई करते हैं तो बरसात आने के साथ साथ उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा और वो 30-35 दिन में हरी खाद के योग्य फसल तैयार हो जाएगी, जिसे हम अपने खेत में हैरो या कल्टीवेटर के माध्यम से मिल सकेंगे और उससे हमें लगभग 2.5 टन के आसपास जो हरे पौधे हैं वो प्राप्त होंगे, जिससे हमारी फसल में आने वाली फसल के लिए कम से कम 25% जो यूरिया और डीएपी की आवश्यकता है उसमें हम कमी ला सकते हैं। साथ ही साथ हम अपना जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है उसको कम करने से रसायनों को कम मात्रा में जमीन में पहुँचाकर जमीन के स्वास्थ्य को सुधारने में सहयोग कर सकते हैं। आने से जमीन में माइक्रोफ्लेक्टोरी और बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं वो हरी खाद का प्रयोग कर और उससे उसका आवंटन करेंगे, जिससे हमें अच्छी खाद और ह्यूमस साथ हमारी जमीन के अंदर माइक्रोफ्लेक्टोरी बहुत स्पीड से बढ़ेगी, जो जीवाणु हमारी आने वाली फसलों में हमारे पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और उसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे पोषक तत्व जो आवश्यक है उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। हरी खाद के प्रयोग से जमीन में कार्बन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी और ये बढ़ने वाला ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेत की भौतिक दशा और रासायनिक दशा को सुधारेगा और पोषक तत्व को विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो, जिंक और फॉस्फेट के माध्यम से देते हैं, इनकी उपलब्धता के लिए जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन खेतों में भी कार्बन की मात्रा लगातार कम हो रही है उन्हें हरी खाद का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे सस्ता और अच्छा टिकाऊ माध्यम है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने खेत में कार्बन को संचित कर सकते हैं और उसका प्रयोग अपने फसल उत्पादन में कर सकते हैं। साथ साथ जलवायु की भी अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन एक 7-8 साल से महसूस कर रही तो कार्बन ही एकमात्र कारण है जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे फॉर्म में रखे हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर हम ठोस रूप में कार्बन को जमीन में संचित करने का प्रयास हरी खाद के माध्यम से या दूसरे और खादों के माध्यम से करते हैं तो ये कार्बन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इससे हमारे फसल उत्पादन के साथ साथ हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी हम रोकने में कामयाब होंगे या उसको कुछ कम करने में कामयाब होंगे, जिससे आने वाले सालों में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही जिन किसान भाइयों की जमीन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे वो अल्कलाइन सॉइल है या एसिडिक सॉइल है, उन क्षेत्रों में भी हरी खाद महत्वपूर्ण क्रिया साबित हो सकती है, जिससे कि हम अपनी जो भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उनमें सुधार कर सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो सकते हैं। तो इन सारी बातों के साथ हरी खाद उत्पादन के लिए भी हमें अपने किसान भाइयों को प्रेरित होना चाहिए और उनको उसके संबंध में विचार करके कार्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, तीन बार जो भी रासायनिक उर्वरक हमें प्राप्त होंगे वो ई टोकन के माध्यम से प्राप्त होंगे, इसलिए समय रहते सभी किसान भाई अपने फसल और भूमि के अनुसार ई टोकन प्राप्त कर लें। बलग्राम ऐप से अपन इसको रजिस्ट्रेशन, अगर किसान भाइयों को चाहे मोबाइल चैनल में कोई असुविधा होती है तो वो किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट या एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ई टोकन जनरेट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ आशा है किसान भाई इसका भरपूर लाभ उठाएगा। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के मैं डॉक्टर हरबिंद सिंह, साथ में से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बी एस सरदाना जी, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना।
2: भैयारो, अभी अपन सुन रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर प्राप्त मौसम की जानकारी और कृषि संबंधित सलाह। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरविंद सिंह और डॉक्टर बी एस कंसाना। तो अपने किसान भैया ने बड़े ध्यान से अपनी जानकारी सुनी हुई है और जो इस समय अपन को कामकाज करने हैं खेती से जुड़े, वे निश्चित समय पे वे ज़रूर पूरे करें। और भैया देखो, कहते हैं कि खेती एक ऐसा कार्य है जिससे कि हमेशा अपन को कई लाभ भी मिले हैं। अब अगर अपनी बात करें तो खेती के साथ साथ आज ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं जो कि खेती पर ही निर्भर करते हैं, या बोला जाए कि उनको जो प्राथमिक उपचार या प्राथमिक उपज की जरूरत होती है वो अपन को खेती से मिलती है। जब अच्छी खेती होती है, जैसे कपास है, अब कपड़े ही बनने हैं, तो कपास को अगला रूप, व्यावसायिक रूप होते होते विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती हैं। उसी प्रकार से गेहूं, चना, विभिन्न प्रकार की खेती आज अपने किसान भैया करते हैं। पहले के समय पे कहो तो कि बहुत से सभी लोग कहो थे कि पारंपरिक जो खेती थी उन्हीं को करते थे, और कई प्रकार के हमारे पास साधन भी नहीं थे, ना ही हमारे पास वैज्ञानिक तरीके से हमें कैसे खेती करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी होती थी। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति विभिन्न माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा करके खेती को और बेहतर तरीके से करने के प्रयास कर रहा है, और बहुत से किसान भैया ऐसे भी हैं जिन्होंने नई तकनीकी का उपयोग करके लाभ भी बेहतर कमाया है। और ये सब तभी संभव हुआ है जबकि उन्होंने मेहनत से, लगन से सीखा और उसको अपनाया। कहते हैं कि खेती जो है विभिन्न प्रकार से अगर समझदारी से करी जाए तो अपन कम लागत में बहुत बेहतर अच्छे परिणाम भी ले सकते हैं। जैसे हम कौन से बीज का चयन करें और हमारे खेत की मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो कैसा हो, अगर हमें ये सही समय पर पता होता है तभी हम जो है खेती को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी अपन को मिलती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से या मिट्टी परीक्षण करा करके। और यही समय जो भैयारो जो है मृदा परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त बनाया जाता है, और अगर अपने अपने खेतों की अगर मृदा का परीक्षण नहीं करवाया है तो इस समय वे करवा भी सकते हैं। और साथ ही भैया इस समय अपन को जो है कुछ ऐसे काम है जो आगामी बारिश है जिससे हमारे खेत की जो मिट्टी है भुरभुरी रहे, नमीदार रहे, उसके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं, यानी कि जो मिट्टी का पलावन करते हैं, मिट्टी के उल्टा पलटी करते हैं वह व्यवस्था कर लें। इससे क्या होता है भैया कि जो मिट्टी है वो भुरभुरी भी हो जाती है, और भुरभुरी के साथ साथ कई प्रकार के जो कीट हैं गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं, और पुरानी फसल के अवशेष भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे खरपतवार भी अधिक मात्रा में अगली फसल में नहीं होते हैं। और भैया जब अपन खेत की मेड़ की मिट्टी को ऊंची उठाए देते हैं तो जितना भी बारिश का आगामी बारिश जो होगी तो उसका पानी होगा हमारे खेतों में संचय होके धीरे धीरे गत भूमिगत होगा, जिससे जो भूमि की जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ती है, और अधिक मात्रा में अगर पानी का भराव हो जाता है तो जब धीरे धीरे करके वो रिसता है जमीन के अंदर बैठता है तो सिंचाई में हमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में पहले से ही नमी होती है। इसके साथ साथ जो मिट्टी है उसमें हवा का आवागमन भी बढ़ जाता है। तो भैया ऐसी व्यवस्थाएं करके हम अपनी खेती को और बेहतर भी बना सकते हैं। और अब सुनते हैं लोकगीत

ऊंट बड़द को जोड़ो भाया लोग कहे छे माने, ऊंट बड़द को जोड़ो भाया लोग कहे छे माने, मैं भी आगे टाबर लागू सांची कोचू थाने या तो

सो भैयारों, अब अपन ने सुना राजस्थानी लोकगीत, और हमें पता है हमारे सभी भैयारों को विभिन्न प्रकार के जो लोकगीत हैं बहुत अच्छे लगते हैं। अपने देश में विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार के लोकगीत होते हैं जो कि हमारी संस्कृति की पहचान भी होते हैं। सो भैया, हर जगह की एक अपनी खास बात होते हैं, वहाँ की मिट्टी अलग होती है, बोली अलग होते हैं और फसलें भी अलग होती हैं, और अपने किसान भैयारों के काम करवे को तरीका भी अलग होते हैं। तो आज अपन बताने वाले हैं ऐसे ही एक किसान भैया के बारे में जिन्होंने खेती को और भी बेहतर तरीके से करो है। उनको नाम है दशरथ सिंह भैया। इनने का करो है कि जो खेत हैं उनके, खेत को दो भागों में बांट दो। आधे भाग में खेत की में तालाब तैयार करो और आधे भाग में जो है खेती करी। और भैया, उन्हें खेती में इस प्रकार से तैयारी से बहुत लाभ भी मिलो, क्योंकि पहले उन्हें का करने आओ थो कि सिंचाई के लाने अलग से व्यवस्था करने आती थी, तो उन्हें इस व्यवस्था से बचाव हो। साथ ही साथ जब उनने खेत में तालाब तैयार करो तो उसके में मछली पालन भी शुरू करो, जिससे कि उन्हें दोहरो लाभ हो। और तो और आसपास जो है खेत के एक छोटी सी पौधशाला भी तैयार कर ली। तो जो पौध वे अपने खेतों के लाने लगाते थे केवल उनके ही तक सीमित नहीं रही, अपने गांव में जिनको भी नई पौध की ज़रूरत होती उनके लाने एक स्रोत भी बन गए। इस प्रकार से उनने अपने आप की जो खेती है बेहतर तरीके से तैयार करी, और उनके इस प्रयास से लोगों को जो पौध लेने के लिए दूसरी जगह जाओ चाहिए थे, बीज लाने पड़ते थे, उनकी ये समस्या भी दूर भई। और साथ ही साथ दशरथ भैया की जो खेती की लागत है वो भी कम भई। तो अपन तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि आप भी विभिन्न तरीके से अपनी खेती को और उन्नत बनाएं। और अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है राजेश कुशवाहा का।

भैया ना देखो, वृक्ष लगा के अपन जो है अपनी धरती को हरो भरो बना सकते हैं, और छोटी छोटी बचत करके जो है अपन अपनी धरती को और भी बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे कि जो कछु भी अपनी प्रकृति ने अपन को दो है, बाई को अपन संभाल के उपयोग करें। ऐसो नहीं करने हैं कि कोनो भी चीज़ बर्बाद होए। अब देखो, अपन अपने आसपास देखत हैं कि प्रकृति ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं। सूर्य से अपन को रोशनी मिलत है, अपने जो नदी तालाब हैं वो उनसे अपन को पीने की सब पानी की मिलत है। वहीं पेड़ पौधे अपन को विभिन्न प्रकार की जो अपने जीवन के लाने आवश्यक चीज़ें हैं प्रदान करते हैं। तो भैया, ई मौसम में अगर अपन पेड़ पौधे नहीं भी लगा सकते हैं, तो आगामी बारिश में जो भी जगह अपन चुनत हैं कि अपन वहाँ पे आगे चल के छोटे छोटे पौधा रोपित करें, तो उनकी तैयारी करके चलें। वहीं अपन जो है, जो पौधे पहले से लगे हैं तो अक्सर देखो जाते हैं कि पशु और जो है उनको नुकसान पहुँचा दे, तो उनके आसपास अपन जो है बाड़ी बना सकते हैं और उनमें पानी भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ बचत, तो देखो भैया बचत ही होते हैं। अपन अपने घर में की बचत करें, चाहे रुपया पैसा की बात करें या फिर कोनो और चीज़ की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छी आदत होते हैं। जब अपन जो कोई भी व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बचत करने की आदत शुरू से अपना लेते हैं, तो जब मुश्किल समय आता है तो उस समय अपनी ज़रूरतों के लिए यही पैसा अपने काम भी आता है। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कभी बीमारी में, कभी आपातकालीन की स्थिति में, घर वाहन या अन्य ज़रूरतों के लिए भी हम इसका उपयोग कर पाते हैं। और कई बार भविष्य में अपन को नहीं पता होता है कि अपन को कब कैसे समय की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस समय अपन इसकी मदद से अपना काम पूरा कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो भैया, अपन को नियमित रूप से जो है बचत की आदत डालना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर के आसपास या अपने घर में भी अगर जो है जो भी अपन को प्रकृति ने दिया है उसकी भी अपन को बचत करके चलना है। अब छोटी सी आदत अपना के अपन बिजली की भी बचत कर सकते हैं। जैसे कि अपन अपने एक कमरा में बैठे हैं और दूसरे कमरा में जा रहे हैं, तो वहाँ के पंखा और लाइट के जो स्विच हैं उनको बंद कर देवें। साथ ही जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बिजली का खर्च करें, और उसी प्रकार से अपन को पानी की भी बचत करके चलना है कि जो अपने नल हैं अगर वैसे ही बह रहे हैं तो उन्हें सही समय पे सुधार लें और कम से कम पानी में जो है उपयोग में लाएं। और भैयारों, अब हो रही है चलवे की बेरा। सभी किसान भैयारों को स्वाति बहन की राम राम।

0: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद टीना।
0: दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर एआई आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड की भूमिका और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अहम बात कही।
2: वी हैव जस्ट कंक्लूडेड वेरी सब्सटेंटिव एंड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। अंडरस्टैंडेबली मच ऑफ द डिस्कशंस एंड इंडीड द बायलैटरल एक्सचेंजेस वर डिवोटेड टू द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बीइंग क्वाड, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities.
0: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है। हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से।
1: देखिये, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश जो चार देश हैं ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है। तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता। ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे।
0: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
1: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं। चारों जो देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है। तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहां पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज उनको और

0: ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं, उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
1: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
0: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है, जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है और जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर। तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका की एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन US डॉलर्स को मोबिलाइज करे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा ये, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आप की ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है, अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनारियों को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए इसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए, कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस है कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश इसमें है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है, क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है, उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दे

0: के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है कि हम कि और जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए। मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में, और जब हम एआई इंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी कि आप कैसे एआई को, इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में हैं वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हैं, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रिजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में एआई इंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, और एआई और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साध सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों ने पेश किया।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर इंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो इंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे एक क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होंगी और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मों से ली गई कुछ खूबसूरत गजलें। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म से ली गई एक गज़ल, जिसे आवाज़ दी है भूपेंद्र ने, शायर हैं बशर नवाज और तर्ज बनाई है खयाम ने।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म से ली गई खूबसूरत गज़ल। कलाम है शहरयार का और धुन बनाई है खयाम ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगली गजल है इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी की। संगीत है चर्ची सिंह का, आवाज चित्रा सिंह की और फिल्म का नाम है अर्थ।

जगजीत सिंह की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म से ली गई बहुत ही प्यारी सी गज़ल, जिसे लिखा है निदा फाजली ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं सरफरोश फिल्म की ये गज़ल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ममता फिल्म से ली गई खूबसूरत गजल लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह के बोल हैं और संगीत रोशन का।

ममता फिल्म की इस खूबसूरत गजल के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में, इंतजार कीजिए।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: जूनियर फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। Evergreen bhi hai, kahani's ever been told. Gen Z bhi hai, hai also Gen Old, nahi purani, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: Ye Akashvani Madhya Pradesh hai. Kuch hi palon mein hamara agla prasaran Delhi kendra se hoga.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है।

0: का उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinched gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The centre has constituted a high-level committee to address

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमीका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है, जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ फौज इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतह ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नज़दीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतह ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक आज़ादी सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने टैप्तोलोगी के और किडरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिलशुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का इहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी हुक्काम जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और ये दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
4: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگا سنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹ اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگا سنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 175,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودھرب میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرگستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2rd راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیر شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواٹ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
5: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے، لیجیے پیش ہے اردو پروگرام کہکشاں۔

दोस्तों, अभी आप रजिया बानो की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था ताबिश कानपुरी का। हम बात कर रहे थे रूहानी सफर और सब्र के बारे में। रूहानी मसाफात का अवलीन जीना खुलूस नियत है और इस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली कुव्वत सब्र है। रूहानियत का मफहूम तर्क दुनिया नहीं बल्कि हुजूम दुनिया में रहते हुए खालिक हकीकी से लो लगाए रखना है। इस ताल्लुक की बुनियाद सब्र पर खड़ी है। जिंदगी में जब हालात हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं तो वही लम्हा हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। सब्र दरअसल वो खामोश तवानाई है जो इंसान की शख्सियत को बिखेरने से बचाती है। ये हमें सिखाता है कि हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह मुकद्दर है। जब हम दामने सब्र थामते हैं तो गोया हम खालिक कायनात की हिकमत पर इस यकीन का इजहार करते हैं कि तेरी रजा मेरी तमन्ना से फायक है। जब तक कल्ब में सब्र की कंदील रोशन न हो, रास्ते की धूल मंजिल का गुबार बन जाती है। इस शेर में कैफ

0: फुरंग में
1: सारी दुनिया से है सिलसिला आपका
0: सारी और मेरे ख्वाब।

दोस्तों, अभी आप मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में कव्वाली समात फरमा रहे थे और कलाम था हनीफ भोपाली का। दोस्तों, किस कदर दिलकश है वो लम्हा जब सब्र और यकीन हम आगोश होकर इंसानी तकदीर बदल देते हैं। ये रूहानी सफर दरअसल अपनी जात की बाजियाबी का नाम है। जब हम कायनात के रंगों में सनाए के रंग तलाश करने लगते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि दुनिया की हर शय फानी है, सिर्फ अल्लाह का इश्क और उसका कुर्ब ही दायमी है। जिंदगी के शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना और इस पर यकीन रखना ही वो असल कामयाबी है जिसे पाने के लिए सूफिया इकराम ने अपनी उम्रें गुजार दी। जब दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो तो बेसाख्ता जबान पर ये शेर आ जाते हैं। निगाहे शौक को वो कैफो सुरूर मिल गया, मेरे सब्र को आज तेरा नूर मिल गया। समीन, इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार जानी बाबू की आवाज में और कलाम है पयाम सईदी का। समाप्त कीजिए।

उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपके खुलूब में सुकून की चंद बीज बो गए होगा। अपने तासुरात और ग्राह कद्र तजावीज हमें खतूत के जरिए जरूर भेजें। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूलें। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाज़त। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी की कहकशा को महकाते रहें। आदाब।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी बहुत धन्यवाद आपको।
2: तो आइए बिना किसी देरी के सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेन जी आपसे है, यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
0: देखिए निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेषकर अपन बात कर रहे हैं कल यूपीआई आप देखें गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी हैं या और कोई ख़रीदारी करनी। इवन आप छोटे, जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं उनके पास भी यूपीआई रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ, और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
2: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी, जनधन, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है, क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की जिंदगी सच में बेहतर की है?
1: देखिए जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो वो 15 पैसे

0: बार को बेच करके, जमीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा देकर।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी बहुत धन्यवाद आपको।
2: तो आइए बिना किसी देरी के सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेन जी आपसे है, UPI आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
1: देखिए निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेषकर अपन बात कर रहे हैं कल UPI आप देखें गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है या और कोई ख़रीदारी करनी। इवन आप छोटे, जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं उनके पास भी UPI रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ, और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
2: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी, जनधन, उज्ज्वला योजना, PM किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुँची है, क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की ज़िंदगी सच में बेहतर की है?
0: देखिए जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो वो 15 पैसे।
1: जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वो नहीं रहा है
2: जी।
1: इसी तरह आप 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको घर से हटा दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो 3 तलाक है निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हो रही, नहीं तो कोई भी आप बताइए 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से, उनको ये नहीं देखते थे कि उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती हैं या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है, तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था, ऐसा लगता था जैसे अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है। लेकिन 3 तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए, वो कहती हैं 3 तलाक ने हमें नई जिंदगी दी है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहाँ हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए।
2: बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी अगला सवाल आपसे है, अगर हम CAA की बात करें, पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को, इस कानून की भावना और उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए CAA कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था
2: जी,
0: और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का, वो निरंतर घटा है, इसी से ये लगा कि वहाँ प्रताड़ना होगी। तो उसी उस समय आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में CAA कानून लाकर जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान
2: जी,
0: उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है CAA का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरस

की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है सीएए का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरस

0: महत्व था, और मोदी सरकार ने जो जिसको कह सकते हैं ना कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जा कर के निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम हैं, वो कानून हैं, तीन तलाक जैसे कह सकते हैं, CAA कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का। तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है, सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है। और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं, और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि CAA सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। मृगेन जी, आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं?
2: देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था
1: जी।
2: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को अस्थायी रूप से 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1,00,000 रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं, और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएं चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बना के। और इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है। आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ न कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगी, तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SSG से जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से लेकर 20,000 रुपये महीने तक कमा रही, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया है, इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं?
0: देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं, तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अभी तो सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश के कूनों को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है, वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है। और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो लाकर

0: देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में वो एक अलग ही रूप में अब दिखाई पड़ती है। मृगेन जी, आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफ़ी बढ़ी है, तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है?
1: देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वह पूरी दुनिया मान चुकी है। ये अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो आप G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि विश्व का कोई भी देश हमें आँख नहीं दिखा सकता, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा, अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है, या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा, बात कर रहे हैं वैक्सीन की बात हो रही, आप कोरोना की वैक्सीन सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। बताओ, जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए वर्षों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया, 6 महीने के अंदर ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था, जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश से जहां फैला हुआ था उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छवि बनी है, निश्चित रूप से इस छवि के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है, अब मदद के लिए भारत कभी किसी के सिक्के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया, और देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने।
0: आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं, रोजगार और विनिर्माण के मामले में जमीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नजर आता है, सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का, और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ जी। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है उस टेक्नोलॉजी को आप तेजी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूँ कि आरआर कैट इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो, आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं, और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है
0: जी।
2: इसका सीधे अभिप्राय यह है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों के कारण

0: आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा, और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है, मृगेन जी आपसे है। नोटबंदी और जीएसटी के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है।
2: 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू। उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, इससे जो काला धन था
1: जी
2: वो देश में समाप्त हो गया था। क्योंकि आप देखते हैं बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर दो के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ हैं और रखे किसी के गद्दे के नीचे हैं, किसी तक की तकिया के नीचे पड़े हुए हैं। बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और उससे भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगा था। चीज और भी हुआ था, महंगाई विशेषकर जो नंबर दो के पैसे लोग लगाते थे जमीन वगैरह के लिए, उससे महंगाई भी काफ़ी कम हुई थी, ज़मीनों के रेट काफ़ी गिरे थे। उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जब पैसों का ये था कि नकदीकरण वो बहुत कम हुआ है, और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके डिजिटाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और देखिए उसके बाद जो आर्थिक सुधार जीएसटी निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा एनडीए से अलग दल थे, सबने विरोध किया। लेकिन अंत में जब उसके फायदा देखा लोगों ने, उसको माना, और उससे जो जीएसटी से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ उससे बढ़ा भी जो टैक्स बढ़ा, चोरी कम हुई, और साथ ही जब चोरी कम होगी देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा, जनता की लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी हमारी, और जो आप करें अर्थसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधाएं, ये सब इसी के लिए। तो जीएसटी ने एक बड़ा ऐसी चीज़ किया जिससे, अच्छा दूसरा इससे फ़ायदा ये है आप कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स है, कहीं 7% है, कहीं 15% है, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही एक देश एक टैक्स का, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। और पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद से सब आपको एक रेट पर मिलेगा, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है देश के लिए, और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे दो

0: प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है
1: जी।
0: मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज़्यादा होता है, समर्थन कम होता है
1: जी।
0: भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी। और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया और आर्थिक सुधारों के साथ और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है
1: जी।
0: आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशंस को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से। और फिर आप जो है जो ये आजकल एक्सप्रेस वे बने हैं, इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो। फिर आप हमारे जो उत्पादन है, उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है
1: जी।
0: तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है। और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है लेकिन गरीबी की रेखा के का प्रतिशत आपके 5वीं अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता, इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से बाहर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक जिले में एक प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है। क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं, जब टैरिफ का वार आया भारत नहीं ला, जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई, तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आपने विकसित भारत 2047 की बात की, अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी, आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम, विषय था NDA सरकार के 12 साल। विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और मृगेंद्र सिंह, वार्ताकार अभिषेक कटियार और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उमाकांत और रमाकांत कुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन। राग है यमन। तबले पर संगत की है, माफ कीजिएगा, पखावज पर है अखिलेश गुंदेचा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित उमाकांत पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन, राग था यमन। पखावज पर संगत कर रहे थे अखिलेश गुंदेचा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी

0: पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
0: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police, along with prompt and result-oriented action at every level.
0: परिणाम लक्षित कार्यवाही
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
4: Yakashwani Madhya Pradesh, Ratri ke 11:10 होने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।